FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुज वन कृषाणुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय सिया राम।
1: भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनूप चलोटा, अनुराधा पौडवाल, सुरेश पाटीकर और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: गीता के अनुशीलन से ये बात सिद्ध होती है कि गीता का आध्यात्मिक पक्ष जितना समन्वयात्मक है, व्यावहारिक पक्ष भी उतना ही सबल है। योगेश्वर श्री कृष्ण का प्रधान उद्देश्य गीता के माध्यम से समाज को व्यावहारिक ज्ञान देना था, किंतु गीता के इस चरम लक्ष्य के विषय में सभी आचार्य मतैक्य नहीं हैं। शंकराचार्य के मत में गीता का मुख्य प्रयोजन निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन है और ज्ञान ही उसका एकमात्र उपाय है, जबकि श्री रामानुजाचार्य भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के लिए गीता में भक्ति योग पर बल देते हैं। उनके मत में गीता ज्ञान दृष्टि से विशिष्टाद्वैत तथा आचार दृष्टि से वासुदेव भक्ति ही है, अतः इन्हें भी कर्म संन्यास के पथ के ही समर्थक कहना चाहिए, क्योंकि कर्माचरण से चित्त शुद्ध के संपन्न हो जाने पर प्रेम पूर्वक वासुदेव भक्ति में तत्पर रहने से सांसारिक कर्म का निष्पादन सिद्ध नहीं होता। लोकमान्य तिलक अपने गीता रहस्य में अपने से पूर्व सभी प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों से भिन्नता रखते हैं। उन्होंने भागवत धर्माभिमत प्रवृत्ति मार्ग को गीता का प्रधान लक्ष्य मानते हुए कर्मयोग को तत्साधन स्वीकारा है। इसके लिए उन्होंने बड़ी ही विद्वतापूर्ण उक्तियां भी दी हैं, किंतु चिंतन का प्रेमी साधक ज्ञान मार्ग से सांसारिक विषयों की अभिरुचि वाला पुरुष कर्मयोग से तथा अनुरागादि मानसिक वृत्तियों के विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति की सहायता से अपने उद्देश्य पर पहुंच सकता है। भिन्न भिन्न मार्गों के अनुयायी साधक केवल अपने ही मार्ग की विशिष्टता तथा उपादेयता पर जोर देते थे और अन्य मार्गों को नितांत हेय बताते थे। गीता के अध्ययन अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि उस समय भारतवर्ष में चार प्रकार के पृथक पृथक मार्ग प्रच में

0: चार प्रकार के पृथक पृथक मार्ग प्रचलित थे, जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग तथा भक्ति मार्ग के नाम से जाने जाते थे। अतः जो जिस मार्ग का अनुयायी था वो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन विविध चिंतन मार्गों का गीता में अपूर्व समन्वय किया है, फलतः गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं की भांति कर्म, ज्ञान, ध्यान तथा भक्ति की धाराओं को मिलाकर तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को पूर्ण कर उन्हें भगवान की ओर अग्रसर किया है। ये समन्वय ही गीता की अपनी मौलिक विशिष्टता है। गीता के अनुशीलनों के उपरांत हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि गीता दलबंदी के दलदल से कोसों दूर है, और आध्यात्मिक तत्व के निरूपण हेतु जितने भिन्न भिन्न मतों की उद्भावना उस समय तक हो चुकी थी, सबका उपयोग कर साधकों के लिए परम रमणीय साधन मार्ग प्रशस्त करती है, जो भिन्न भिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले प्राणियों के लिए भी नितांत सुखकर है। हम कह सकते हैं कि गीता अपने मौलिक ज्ञान की विशिष्टता के कारण आज भी समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिसमें गीता का अनुवाद उपलब्ध न हो। गीता के विभिन्न भाषाओं में कितने ही सुंदर अनुवाद हैं, कितने ही पांडित्यपूर्ण विवेचनात्मक ग्रंथ हैं। गीता का आकर्षण सार्वजनिक है, वो सब देश तथा काल के लिए समान है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीता का समन्वय तत्व विषय पर विचार। आलेख डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा का था और वाचन स्वर था अंजू पांगती का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

अभी आप सुन रहे थे सतीश पाठिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों ने FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आपसे कुछ देर बाद हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में। आज का विषय रहेगा गर्मियों में पशु सुरक्षा और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का और 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे यात्रा ब्रज 84 कोस की। आज का पड़ाव स्थल रहेगा कामवन, ओबी आलेख और प्रस्तुति सहयोग होगा रश्मि शर्मा का। कर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम गीतांजलि के कुछ नगमे, और 9:20 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, समसामयिक बाल साहित्य लेखन और सामाजिक संदर्भ। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि और आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

नमस्कार। 30 मिनट का समय होगा, कार्यक्रम याद है जरा जरा। आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में वार्ताकार दीपचंद्र वर्मा, जनरल मैनेजर रिफाइनरी मथुरा से ओपी सिंह की बातचीत, और 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 11 बजे का समय रहेगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। नमस्कार। 30 मिनट पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। 12 बजे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम होगा गीत बात और SMS। 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज कलाकार होंगे ब्रजेंद्र सिंह जाधौन।

बजकर 15 मिनट पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोक। आज की चर्चा का विषय रहेगा सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे महिलाओं के लिए योग और स्वास्थ्य एजिंग। इस कार्यक्रम में वार्ता सुनेंगे ब्रज में अधिक मास का महत्व और परंपरा। वार्ताकार होंगी सुषमा सारस्वत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, गर्मी इस समय अपने चरम पर है, मनुष्य को कूलर और पंखे में चैन नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में हम अपने पशुओं की सुरक्षा कैसे करें, आज इसी विषय पर हम आपके सामने बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जानवरों को तेज़ धूप में न बांधें, उसको बंधा हुआ न छोड़ें तेज़ धूप में। जानवर को तेज़ धूप में काम भी नहीं लेना चाहिए, अगर काम लेकर के आ रहे हैं तो उसको ठंडे के समय में ही सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लें, और उसके बाद उसको पानी पिलाएं। जानवरों को समूह में इकट्ठा बांधने पर भी बहुत अधिक उस क्षेत्र में गर्मी हो जाती है, उस जगह पर गर्मी हो जाती है, उससे भी बचना चाहिए। काम से पशु लौटता है तो उसे तुरंत नहला दिया जाता है या बहुत अधिक ठंडा पानी पिला दिया जाता है, इससे भी पशु बीमार हो सकता है। इसलिए अगर काम के बाद पशु लौट रहा है तो उससे थोड़ी देर उसे ठंडा होने दें, उसके बाद उसको पानी पिलाना चाहिए और तब उसको जो चारा है वो दिया जाता है। वातावरण का तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक इस समय है, तो उस समय जानवरों को ज़्यादा गर्मी लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए जो काले धन वाले पशु हैं और ख़ास करके उनको तो बाहर धूप में नहीं बांधना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे छाया में उनको बांधना चाहिए। और काले रंग वाले जो पशु हैं उनको विशेष रूप से बहुत अधिक गर्मी लगती है। किसी भी आयु के पशु को लू लग सकती है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। जब पशु को लू लग जाती है तो उसमें किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं इसको आप पहले जान लें। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये तापमान करीब 106 से 107 और कभी कभी 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच जाता है। बेचैनी होती है, सुस्त हो जाता है पशु, हाथ पैर में उसके में दर्द होता है, मांसपेशियां में जो है हड़कल होती है, मुँह एकदम सूख जाता है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह से झाग देने लगता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, सांस लेने का औसत उसका अपेक्षाकृत बढ़ जाता है और शरीर का भार कम होने लगता है। लू के प्रकोप से कुछ जानवरों में तो गर्भपात हो सकते हैं, कुछ जानवर तो फिर गर्मी में भी नहीं आते हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। दूध देने वाले पशुओं को इस समय दूध की जो

0: मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर उसको एक बार लू लग जाती है तो फिर दूध पर वो पुनः आने में उस काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधानी के तौर पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको सूरज की रोशनी से अलग ठंडे स्थान पर इन पशुओं को रखना चाहिए। अगर कोई बीमार पशु हो गया है तो ठंडे स्थान पर रख करके उसका उपचार किया भी जाना चाहिए। ठंडे से पानी से पशु को पोंछें, बर्फ़ की पट्टी शरीर पर रखें यदि बहुत अधिक बुखार आपको महसूस हो रहा है तो, और पैरासीटामोल 5 ग्राम एक समय में आप पशु को खिला सकते हैं ये टैबलेट, या 5 ग्राम की एनाल्जिन की गोली भी खिला सकते हैं जिससे पशु के तापमान में कुछ कमी आए। इसके अतिरिक्त पानी पशुओं को प्रचुर मात्रा में पिलाते रहें, पानी में थोड़ा सा नमक और गुड़ मिला करके भी पिला सकते हैं। सावधानी के तौर पर बहुत अधिक गर्मी में पशुओं से काम न लें, जहाँ पर हवा का आवागमन है वहाँ पर पशुओं को बांधें, ठंडे स्थान में बांधें, छाया में बांधें, और इन सब बातों को ध्यान में रख करके पशुओं को सुरक्षा करेंगे तो लू से पशुओं की सुरक्षा हो सकती है। अगर किसी पशु को लू लग गई है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका तुरंत इलाज करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में, जानकारी विषय था कर्मियों में पशु सुरक्षा, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर देवेंद्र सरस्वत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
0: हुआ न छोड़ें तेज धूप में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2 लक्ष रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये सर्वकारस्य योजना

0: योजनाम कार्यान्वयनस्य विषयेपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। फूले बिस्तरे गीत का ये नगमा एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।

मन्ना डे और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म सीमा में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है कभी कभी।

उदास और साथियों के गाए फिल्म नाम के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है।

0: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप एसआरजी। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में एसआरजी गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य की 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश

0: के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन भी बारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम। और भैया यह समय ब्रजमंडल में खूब खूब आनंद छा रहे है और अधिक मास में तो साहब कहूँ परिक्रमा लग रही है। ब्रज 84 कोस की कहूँ यमुना किनारे अखंड पाठ चल रहे हैं, कहूँ बढ़िया बढ़िया शरबत, ओ हो बेल को शरबत, फाल सेब को शरबत, कहूँ तो लीची को शरबत, और कल हमने देखे हो वह आम को, बढ़िया सुंदर शेख हमारे ब्रजवासी भैया खूब खूब वितरण कर रहे हैं। और यह समय तो दूर दराज से जो पर्यटक आए हैं खूब आनंद ले रहे हैं और भैया खूब खूब गुलाब जल के छिड़काव है रहे हैं, केवड़ान को छिड़काव, खस के बंगला खूब आनंद आ रहा है। तो आज आपको सुनवा में यात्रा ब्रज 84 कोस की आज को पड़ाव स्थल है कामवन, वो भी आलेख प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को। तो भैया आनंद लो या ब्रज 84 कोस की यात्रा के या कामवन के स्थल को।

जय श्री कृष्णा। यात्रा ब्रज 84 कोस के 20वें अंक में आपने की काम्यवन की यात्रा, और काम्यवन की यात्रा के भाग 2 में हम और कुछ विशेष स्थानन की आपको यात्रा कराए जा रहे हैं।

तो आज की यात्रा सर्वप्रथम पहुंची है काम्यवन के ही धर्मकुंड की ओर। यह कुंड काम्यवन की पूर्व दिशा में है। यहाँ श्री नारायण धर्म के रूप में विराजमान हैं। पास ही में विशाखा नामक वेदी है। श्रवण नक्षत्र बुधवार भाद्रपद कृष्णाष्टमी में यहाँ स्नान की विशेष विधि है। धर्म कुंड के अंतर्गत नर नारायण कुंड, नील वराह, पंच पांडव हनुमान जी, पंच पांडव कुंड, मणिकर्णिका, विश्वेश्वर, महादेव आदि दर्शनीय हैं। या पंचतीर्थ सरोवर के निकट ही पांडव और द्रौपदी की दिव्य मूर्ति हती। कछु समय पहले या स्थान को जन शून्य होने पे यहाँ ते कछु मूर्ति चोर चुराए के ले गए और कछु खंडित है गयी। तब ये बची भई मूर्ति ही निकट के कामेश्वर मंदिर में पधराई गयी। पास ही में धर्मकूप और अनेक स्थली हैं जिनको संबंध पांडवंते रहो है। यहाँ यशोदा कुंड भी है जहाँ कृष्ण की माता श्री यशोदा जी को

वह पित्रालय हतो। श्री कृष्ण बचपन में अपनी मैया के संग कबहु कबहु नंद गोकुल और गैयन के संग पड़ाव में यहाँ ठहरो करते। श्री कृष्ण सखान के संग यहाँ गोचारण करते। यहाँ गया कुंड भी है। गया तीर्थ ब्रजमंडल के या स्थान पर रह के कृष्ण की आराधना करो करे हैं। गया कुंड के दक्षिणी घाट को नाम अगस्त घाट है। यहाँ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में स्नान तर्पण और पिंडदान आदि कर्मकांड प्रशस्त हैं। तीर्थराज प्रयाग को भी यहाँ स्थान है। तीर्थराज प्रयाग ने यहाँ श्री कृष्ण की आराधना की नी। प्रयाग और पुष्कर ये दोनों कुंड एक ही संग है। यहाँ भगवान ने द्वारका कुंड बनायो। श्री कृष्ण ने यहाँ द्वारका ते ब्रज में पधार के राजा महिषीन के संग यहाँ शिविर बनाए के निवास कीनो। द्वारका कुंड, सोमानी कुंड, मान कुंड और बलभद्र कुंड ये चारों कुंड परस्पर सन्निकट अवस्थित हैं। यहाँ नारद जी की आराधना स्थली नारद कुंड के स्वरूप में है। देवर्षि नारद यह स्थान पे कृष्ण की मधुर लीलान को गान करते भय अधीर है जायो करते। यहाँ मनोकामना सिद्ध करवे वालों मनोकामना कुंड है। विमल कुंड और यशोदा कुंड के बीच में मनोकामना कुंड और सरोवर एक संग विराजमान है। यहाँ स्नान आदि करवे पे मन की सबई मनोकामना पूर्ण है जाए हैं। काम्य वन में गोपिका रमण सरोवर है। जहाँ मन की सारी इच्छा पूर्ण है जाए हैं और वही काम्य वन में अन्य अन्य सहस्त्र तीर्थ विराजमान हैं। यही क्षेत्र में सेतु बंध सरोवर है। श्री कृष्ण ने यहाँ श्री राम के स्वरूप में गोपीन के कहवे ते बंदर के द्वारा सेतु को निर्माण करवायो। अब यह सरोवर में सेतु बंध के भग्नावशेष दर्शनीय हैं। कुंड के उत्तर में रामेश्वर महादेव जी दर्शनीय हैं, जो श्री रामावेशी श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित भये। कुंड के दक्षिण में वापार पे एक टीले के रूप में लंकापुरी भी दर्शनीय है। यहाँ लुकलुकी कुंडऊ है। गोचारण करते समय कृष्ण अपने सखान के संग खेलते भये बिने छोड़ के कछु समय के काजे एकांत में या परम रमणीय स्थान पे गोपीन ते मिले। उन ब्रज रमणीन के संग यहाँ लुका छुपी खेलन लगे। सब गोपीन ने अपनी अपनी आँख मूंद ली। तब कृष्ण निकट ही पर्वत की एक कंदरा में प्रवेश कर गए। सखी वहाँ भगवान कृष्ण को चारों ओर ढूंढन लगी, किंतु कृष्ण कहूँ दिखाई नहीं दिए। तब वे बड़ी चिंतित है गयी, कृष्ण हमें छोड़ के कहाँ चले गए। कृष्ण को ध्यान करने लगी। जहाँ वे बैठ के ध्यान कर रही ही वह स्थल ध्यान कुंड है और जा कंदरा में कृष्ण छुपे वाकु लुकलुकी कंदरा कह में है। यहाँ चरण पहाड़ी भी दर्शनीय है। श्री कृष्ण यह कंदरा से छिपके जा शिला पे प्रकट भये और जहाँ उनने मधुर वंशी को वादन किया वह वंशी की ध्वनि को सुन के सखीन को ध्यान टूट गया और वे अपने प्राण प्रियतम को खोजती भई वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई और वहाँ कृष्ण बिन को वंशी बजाते भय दिखे। तो वे दौड़ के वहाँ पहुंची और बड़ी आतुरता के संग कृष्ण सो मिली। वंशी ध्वनि से पर्वत पिघल जाए के कारण वामे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभर आए। आज हुए चरण चिन्ह स्पष्ट रूप में दर्शनीय हैं। पास ही में वह पहाड़ी पर जहाँ बछड़ा चल रहे हैं और सखा खेल रहे हैं पत्थरों पे गल गए और उन बछड़ान के सखान के चरण चिन्ह अंकित है गए, जो 5000 वर्ष बाद आज स्पष्ट रूप से दर्शनीय हैं। यहाँ विह्वल कुंडऊ है। चरण पहाड़ी के पास ही विह्वल कुंड और पंच सखा कुंड है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुन के गोपी प्रेम में विह्वल है गई और यही काजे यह स्थान विह्वल कुंड के नाम से प्रसिद्ध भयो। पंच सखा कुंड के नाम रंगीला छबीला जकीला मतीला और दतीला कुंड हैं। ये सब अग्रावली गांव के पास विद्यमान हैं। यहाँ यशोधरा कुंडऊ है या फू घोष रानी कुंडऊ के में है। घोष रानी यशोधर गोप की बेटी हती।

यशोधर गोप ने यहाँ अपनी कन्या को विवाह कीनो। लुकलुकी कुंड के पास ही प्रबोधानंद जी की भजन स्थली है। श्री प्रबोधानंद जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु और पितृव्य थे। ये सर्वशास्त्र के पारंगत अप्राकृत कवि हते। श्री वृंदावन महिमामृत के नाम सो अपने 100 शतक अर्थात 10,000 श्लोकन की रचना कीनी, जामे से मात्र 17 शतक ही उपलब्ध है सके जो आज प्रकाशित है। वृंदावन महिमा को अद्भुत ग्रंथ है ये। काम्य वन में श्री गुरु काशनी आश्रम स्थित है। आज यह आश्रम रूपी विशाल मंदिर समस्त धर्म प्राण प्रेम अनुरागीन के काजे आराधना को केंद्र है। यहाँ विराजमान ठाकुर श्री रमण बिहारी जी की सेवा पूजा बड़े प्रेम से हुए है। कलावता गांव के पास में इंद्रसेन पर्वत पे फिसलने शिला है। गोचारण करवे के समय श्री कृष्ण सखान के संग में यहाँ फिसलवे की क्रीड़ा करो करते। श्री राधा और उनकी अंतरंग सखी यहाँ फिसलवे की क्रीड़ा करो करती। आज निकट के गांव के प्रजवासी बालक गोचारण करते समय यहाँ फिसलवे की क्रीड़ा करो करे हैं।

0: यही के पास एक पहाड़ी के मध्य में व्योमासुर की गुफा है। यहाँ पे कृष्ण ने व्योमासुर को वध कीनो। यह मेधावी मुनि की कंदराऊ कहमे है। मेधावी मुनि ने यहाँ कृष्ण की आराधना कीनी। पासे की पहाड़ी के नीचे श्री बलदेव प्रभु को चरण चिन्ह है। जा समय श्री कृष्ण व्योमासुर को वध कर रहे है, वह समय पृथ्वी कांपन लगी। बलदेव जी ने अपने चरणन से पृथ्वी को दबाई के शांत कर दीनो। उनके चरणन को चिन्ह आजो दर्शनीय है। केशी वध हो जावे के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बाल सहित पुनः आनंद प्रमोद में मग्न है गए। वे लुका छुपी खेल को खेल खेलन लगे। जो कछु सखा चोर बनते और दूसरे बिनकू ढूंढते। जब वे अपने खेल में पूर्णतः मग्न है गए तो कंस को भेजो भयो व्योमासुर नाम को दैत्य भी ग्वाल वेश धारण करके या मंडली में प्रविष्ट है गयो। भगवान श्री कृष्ण यह सब समझ गए। व्योमासुर नाम को यह दैत्य बहुधा खेल में चोरई बनो और बारी बारी से पकड़ पकड़ के सखान को एक पर्वत की गुफा में बंद कर आयो कर। तो धीरे धीरे जब चार पांच ही सखा रह गए तो श्री कृष्ण ने बापू पहचान लियो और मायासुर के वा पुत्र व्योमासुर ने अपनो असली स्वरूप दिखायो। भगवान श्री कृष्ण ने वा को वध कर दियो और अपने सखान को पर्वत गुफा के पीछे से निकालो। यही काजे या स्थली व्योमासुर को मोक्ष प्रदान करने वाली व्योमासुर गुफा के नाम से जानो जाए है। व्योमासुर गुफा से कछु दूरी पे है दर्शनीय स्थल भोजन थारी। श्री कृष्ण ने व्योमासुर को वध करके यहीं या कुंड में सखान के संग स्नान कीनो। सबई गोप सखान ने यहाँ भोजन कीनो। भोजन करवे के स्थल में अबव पहाड़ी में थाल और कटोरी के चिन्ह विराजमान हैं।
1: ब्रज के बारह बनन में यह काम बन मुख्य परम श्रेष्ठ पांचवा बन है। यहाँ की यशोदा मैया जो है कामबन की लड़की थी, या कारण श्री कृष्ण बलराम को प्यार या कामबन पे बहुत गहरो है। तो एक बार श्री कृष्ण गऊ चराते चराते आप इंद्रसेन पर्वत पे आए हैं। इंद्रसेन पर्वत का नाम कैसे पड़ा है कि जब गौतम ऋषि ने इंद्र को और चंद्रमा को जो श्राप दिया था तो श्राप का समय इंद्र ने इस पर्वत पर जो है तप करके जो है पूर्ण किया है। नीचे जो है क्षीर सागर कुंड है जिसको भगवान ने कृष्णावती को वरदान दिया था। ये जो है कृष्ण बलराम है, शेषावतार बलराम जी हैं, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये राधा जी हैं।

और ये जो है माखन और दही कटोरे हैं। ये कृष्ण का माखन कटोरा है, ये बलराम जी का दही का कटोरा है, ये शिला है, पत्थर की शिला है। अब मैं जो ये कथा भोजन थाली से जुड़ी हुई है कि अयोध्यापुरी के राजा कोबलास हुए हैं, उनके जो है एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोमवंशी राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी और अयोध्या में उनको घर जमाई रख लिया। कुछ दिन बाद भद्रावती के सुकेतु नाम के राजा ने अयोध्यापुरी पे हमला किया, जिसमें राजा कोबलास और सूरसेन जो है दोनों मारे गए हैं। अब कृष्णावती जो है अकेली और विधवा हो गई है। उन्होंने अपने दोनों राज्यों को त्याग दिया है और वो विष्णु भक्ति में लग गई। सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी का सिंचन कर रही और विष्णु भगवान की पूजा कर रही। भक्ति करते करते 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा, लेकिन अपनो नित्य कर्म पूजा पाठ नहीं छोड़ रहा। बुखार की हालत में जैसे सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु ने दर्शन देने हैं, अरे कृष्णावती तेरे यह नित्य कर्म से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है, प्रभु मेरी 85 साल की उम्र हो गई, वैसे तो धन धान के प्रभु मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला, जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु मेरी 85 साल में इतनी पत्थर की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर दाऊ भैया और ग्वाल बालन के संग आप जो है भोजन करें, आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार होगा। विष्णु भगवान बोले, कृष्णावती ऐसा ही होगा, जब मैं द्वापर में जन्म लेऊंगो तब मैं तू पे बैठ के भोजन करूंगा। ये वरदान देते हुए विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। द्वापर में जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हो गए हो तो कंस मामा कृष्ण को तरह तरह के मारवे के उपाय करवे लगो है, तो दुखी होके यशोदा मैया 1.5 वर्ष के 2 वर्ष के कृष्ण को और बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ कामन आ गई है। यहाँ आकर उन्होंने दोनों भैया ने बाल रूप में ही गौचारण लीला करी है, कहीं आप आंख में चौनी खेले हैं, कहीं आप चोर चोर को खेल खेल रहे हैं। तो एक दिन गौ चराते चराते कृष्ण बलराम अपने सखन के संग या इंद्रसेन पर्वत पे आ गए। गाय तो आपने क्षीर सागर में पानी पी भी को छोड़ दी है और नीचे जो शिला है इस पर बैठ के कहवे लगे है, अरे दाऊ भैया, अरे सखाओ, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो, का छाक रखी है, सब सखा अपनी छाकन ने जो यह शिला पे रख दियो, यहाँ पे बैठ के भोजन करेंगे। तो सब सखान ने अपनो अपनो भोजन जो उनकी मैया ने बना के दियो शिला पे रख ली नो है। उसके बाद मधुमंगल से कहवे लगे, मधुमंगल कृष्ण को गरीब सखा हो, बाकी मैया ने बाकू कोई छाक भोजन नहीं रखो, उस पड़ोस से 3 दिन की बासी खट्टी छाछ लेके आयो। जब कृष्ण बार बार कह रहे, अरे मधुमंगल तेरी मैया ने का भोजन रखो, वह रख। अब संत बढ़िया बढ़िया भोजन लाए, बेचारा गरीब हो, बाप 3 दिन की खट्टी छाछ, अब कृष्ण के आगे वह छाछ नहीं रखे और ऊपर आके भक्के और वह छाछ पीवे लगो। कृष्ण ने आवाज दी, जब मधुमंगल नहीं आयो है तो कृष्ण स्वयं चढ़ के आए हैं, मधुमंगल छाछ पी गए और लास्ट जो गस्सा हो वाके मुंह में भरो रहे। तो भगवान ने आते ही वाके जो है गुलचा मारा है तो मधुमंगल की जो झूठी छाछ है वो कृष्ण के मुंह पे गिरी और भाई आप ऐसे खा रहे हैं जैसे मक्खन, बड़े चाप से उस झूठन को जो है छाट रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो तो सही कैसे अवतार हुए, कैसे कृष्ण हुए। जब उन्होंने इस सीन को देखा तो इस स्थान पर ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये अवतार नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, ये तो सब ग्वारी गमारन की सबकी झूठन खा रहा। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनके यहाँ से गाय बछड़ों को चुरा के उठा के जो है अपने ब्रह्म लोक को ले गए और फिर आके कहवे लगे, अरे कान्हा तेरे गाय बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ है? कृष्ण ने गऊओं के नाम रख रखे, उनको आवाज दी, जब कोई गऊ नहीं आई है तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखे ब्रह्मा जी उनके गाय बछड़े को उठा कर ले गए। तब उन्होंने समझ गए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण बाल रूप में ही वो गाय बछड़े या चरते हुए यहाँ दिखाए हैं। ब्रह्मा जी ने फिर भी दूसरे प्रकट कर दिए। तो भगवान ब्रह्मा ने देखो, अरे इनको तो मैं चुरा के ऊपर ले गए, ये गाय कहाँ से आ गई? तब भी ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ है। जब उन्होंने ऊपर

0: के देखा कि बोई गाय बछड़े चल रहे हैं और निजे भी बोई गाय बछड़े चल रहे हैं, तब उन्होंने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने श्री बाल रूप कृष्ण से क्षमा मांगी है कि प्रभु आप सब ग्वारी गमारन की झूठन खा रहे, या कर मैंने ये कृत्य किया है, क्षमा करें। तो ब्रह्मा जी तो चले गए हैं। उसके बाद कृष्ण बलराम ने तो सखान पर के साथ बैठकर उस शिला पर भोजन की है। भोजन करने के बाद उसमें झूठन जो है छोड़ी है, तो उस झूठन से कृष्णावती का तो उद्धार होकर, जो कृष्णावती शिला थी उसका नाम उद्धार होकर वैकुंठ धाम को चली गई है। और जब से भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किए हैं तब से इस शिला का नाम भोजन थाली शिला हुआ। यहाँ प्रभु के दोनों भैयान के दर्शन है, नीचे भोजन किया है, यहाँ पर दही माखन करके विश्राम किया।
1: पास ही में श्री कृष्ण के बैठवी को सिंहासन स्थलों विद्यमान है। सभी लोग एक शिला को वाद्य यंत्र के रूप में व्यवहार करो करते। आज वह शिला को बजाये पे नाना प्रकार के मधुर स्वर निकले हैं। यह पाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध है। पास ही में शांतनु की तपस्या स्थली शांतनु कुंड है, जामे गुप्त गंगा, नैमिष तीर्थ, हरिद्वार कुंड, अवंतिका कुंड, मत्स्य कुंड, गोविंद कुंड, नरसिंह कुंड और प्रहलाद कुंड, ये सभी विद्यमान हैं। भोजन स्थली की पहाड़ी पर श्री परशुराम जी ने भगवान की आराधना की। तो श्रोताओ, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम अपनी यात्रा को आगे ले जाएंगे काम्यवन से बरसाना मार्ग की ओर। तब तक की काजे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

भैया और भैया अपना आनंद लियो, यात्रा पृष्ठ 84 कोश की। वृतांत हो काम वन और यज्ञ प्रस्तुति सहयोग है कर रहे हैं अश्वि शर्मा और उनके साथी। और आइए सुनवा में आपको आज हवेली संगीत। कलाकार हैं शिव कुमार चतुर्वेदी, प्रस्तुत कर रहे हैं पहला पद है ललन जागियो, सूरदास की रचना, राग भैरव में है।

अलन जाग यो बल गई, सूरदास की रचना याही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हो है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से
1: बेटा करेंगे। मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है

0: कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों

0: देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Doki in Meghalaya and Srimantpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
4: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. A joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ नगमे। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक में, आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: विनोद राठौर और अलका याग्निक को फिल्म जीत में

अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले को, फिल्म का नाम है नया दौर।

0: मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले के गाए, फिल्म नया दौर के इस गीत के साथ ही चित्र प्रसंगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, समसामयिक बाल साहित्य लेखन और सामाजिक संदर्भ। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि और आपसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओं, बचपन की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे दिन याद आते हैं, कुछ ऐसे दिन जहन में होते हैं जहाँ एक स्वच्छंदता वाला जीवन हर व्यक्ति ने जिया हुआ होता है। एक ऐसा जिसमें आयाम की बात करें, चेतना की बात करें या स्वप्नों की बात करें, उनको किसी सीमा में नहीं बांध सकते। इसीलिए शायद वो जो असीमित आनंद का एक समय जो व्यक्ति जीता है, और शायद इसीलिए लिखने वालों ने, चाहे वो साहित्य में लिखा हो, चाहे गद्य में लिखा हो, पद्य में लिखा हो, बचपन को हमेशा ईश्वरीय आयामों वाला एक रेखांकित किया है, चिन्हित किया है। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम बचपन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ चीज़ें समाज से विलुप्त हो रही हैं। बचपन अब वो सहज बचपन नहीं रह गया जिसकी कल्पना कवि साहित्य में मनीषियों ने की होगी। बहुत सारी आधुनिकता आ गई है, बहुत सारी सुख सुविधाएं आ गई हैं, उसने कुछ दिया भी है तो कुछ चीज़ों को छीन भी लिया है हमसे। तो आज के संदर्भों में जो बचपन है उसको किस तरह से देखा जा रहा है, जिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, बाल साहित्य के संदर्भ में जो लेखन वर्तमान संदर्भों को छूते हुए हो रहा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि साहब। आप बाल साहित्य लेखन से जुड़े हुए हैं और उनको राष्ट्रीय, राजकीय, क्षेत्रीय बहुत सारे ऐसे पुरस्कार इन क्षेत्रों में मिले हैं जिनसे नवाजा गया है, तो वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद साहब। नमस्कार सिंह साहब,
1: जी,
2: और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: तो बाल साहित्य की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा एक ऐसा अनूठा विषय भी कहें, एक ऐसा अनूठा संसार कहें, कि जिसने भी बाल साहित्य को लिखा है, जिया है, वो अपने आप में अलग रहा है। तो आज के संदर्भों को अगर हम देखें, जैसे मैं अपनी शुरुआत की बात में कर रहा था कि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, संदर्भ भी बदल गए, तो क्या कुछ ऐसा है जो आजकल बाल साहित्य में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है या लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर बच्चों तक?
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। समय दरअसल परिवर्तनशील है और समय के परिवर्तन के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इस वक्त बाल साहित्य, जिसके लिए कभी भी हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते थे,
1: जी
2: आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके लिए भी हमें अलग से प्रयास करने पड़ते हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, घरों में दादी होती थी, बाबा होते थे, नाना नानी होते थे, और उस वक्त जो है बच्चे को सोते समय दादी के पास सोता था, बाबा के पास सोता था, तो वो उस वक्त उसकी जो जिज्ञासाएं हुआ करती थी बच्चे की, वो उनके सामने प्रकट करता था। और वो कहता था कि दादी मुझे आज ये कहानी सुना दो, आज ये कहानी सुना दो, और दादी भी उसे बड़े प्रेम से जो है बच्चे को कहानियां सुनाया करती
1: मतलब
2: थी।
1: वो उस संसार में ले जाती थी
2: जी
1: जो कल्पनातीत होता है,
2: हाँ,
1: जिसको
2: कल्पनातीत ही नहीं, वास्तविक समाज से भी वो परिचित कराती थी, वास्तविक जीवन से परिचित कराती थी। वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाया करती थी, जैसे कि अगर आप रामचरितमानस को लें, रामचरितमानस में जीवन जीने की कला है, और जो दादी बाबा हुआ करते थे वो बच्चे को सोने से पहले उसकी चौपाइयां सुनाते थे, सुनते थे,
1: या कुछ किसी उसका कोई शेपक, कोई छोटी
2: उनका,
1: कहानी ले
2: हाँ,
1: ली,
2: उनका कोई
1: छोटा संदर्भ
2: चरित्र,
1: ले
2: चाहे
1: लिया।
2: भरत जी का, लक्ष्मण जी का, किस तरह से परिवार में जिए, किस तरह से अलग रह के भी जिए, तो ये सारी चीजें जो दादी बाबा सुनाया करते थे, नाना नानी सुनाया करते थे, उनका आज नितान

0: शांत अभाव हो गया है। उसका कारण यह है कि बिना चाहे ही धीरे धीरे संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और वो एकल परिवारों में ही परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। एक और समस्या है कि पति पत्नी यानी कि बच्चे के माता पिता स्वयं भी नौकरी पेशा हो गए हैं, तो अब जो माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु कहलाया करते थे, आज उनके पास समय ही नहीं है। वो सुबह को भाग भूक मचाते हुए अपने दफ्तरों को भागते हैं, बच्चे को या तो कोई धनाढ्य परिवार होता है तो क्रेंच में पालना घर में बच्चे को छोड़ जाते हैं, या फिर वो किसी तरह आया के सहारे छोड़ जाते हैं। वो बच्चे जिनका कि बचपन जो है जीवन की नींव होती है, उसे उनको आया के सहारे बितानी पड़ती है। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन हुआ है, ये बहुत ही घातक परिवर्तन हुआ है। और इसमें जो हम अनजाने में वो आरुणी की कहानी सुनाते थे, एकलव्य की कहानी सुनाते थे, दानवीर कर्ण की सुनाते थे, तो ये जो कहानियां उसके अंदर बच्चे के अंदर संस्कार पैदा करती थी, और जो हमारी भारतीय संस्कृति एक दूसरे से स्थानांतरित होती थी, वो नितांत इसकी जो है अभाव हो गया है।
1: मतलब वो सिर्फ कहानियां नहीं होती थी, वो सिर्फ कल्पनाएं नहीं होती थी, वो उसमें पूरा एक जीवन का निचोड़ होता था, जीवन का पूरा एक यथार्थ छिपा रहता था। और वो कब हम रूपांतरित करके बच्चों तक पहुंचा देते कहानियों के माध्यम से, पता भी नहीं लगता
0: था। नहीं
1: तो ये परिवर्तन का एक ये कहें कि दुष्परिणाम हम और हमारे परिवार झेल लें, कि जहाँ एकल परिवार, और एकल में भी आपने जैसा जिक्र किया कि वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, अब वो दो भी ना होके एक ही रह गया और एक पे भी समय नहीं है, तो दरअसल हम क्या करने के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें खुद भी नहीं पता है। तो ये एक बड़ा कहें कि वैसा समय चल रहा है इसमें। तो अब ऐसे में जहाँ परिवारों की जो चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुँच रही, संस्कार नहीं पहुँच रहे, तो वो जो हमारे पुराने माध्यम कहानियां हुआ करती थी उनसे नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पे फिर वो साहित्य के माध्यम से होगा। तो पहले जो साहित्य रचा जा रहा था संदर्भों में, क्या आज आज वो बच्चों तक पहुंच रहा है, लिखा जा रहा है?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। दरअसल क्या है, आज एक और संकट है। आज सबसे बड़ा संकट पठनीयता का हो रहा है। बच्चे आज विज्ञान के, अति विज्ञान के युग में जी रहे हैं, और इस अति भौतिकतावादी युग में बच्चे जब दो ढाई वर्ष के ही होते हैं, तभी उनके माता पिता उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जो बच्चा कुछ भी मोबाइल के बारे में नहीं जानता है, वो भी धीरे धीरे उसको फिर उंगलियां चलाना शुरू कर देता है, और उसकी आदत उसको पड़ जाती है। और छोटा सा बच्चा भी अगर उसके हाथ से मोबाइल ले लो तो उसे जो है रोना शुरू कर देता है। तो ये जो स्थिति है, अब इस पठनीयता को हम किस तरह से ठीक करें, इसके लिए कई बातें हैं। जैसे कि माता पिता के पास तो समय है ही नहीं। अब आती है बात ये कि जब माता पिता के पास समय नहीं है, तो दूसरा जो दायित्व आता है वो गुरुजनों का आता है। और गुरुजनों को दरअसल मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि विद्यालयों में जब प्रार्थना होती है सुबह के समय, लगभग सभी विद्यालयों में प्रार्थना तो होती ही है, हमारे समय से ही होती आ रही है, तो उस वक्त अगर अध्यापक वर्ग, प्रधानाचार्य वगैरह ये करें कि वो उसी में एक छोटी सी सीख बच्चों को प्रतिदिन दें, कि कौन कौन बच्चे अपने घर में अखबार पढ़ते हैं, कौन कौन बच्चे पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कौन से बाल पुस्तकें पढ़ते हैं, ये बातें
1: उनसे पुस्तकों के नाम बता सकते हैं,
0: कुछ पुस्तकों के नाम बताएं, कुछ लेखकों के नाम बताएं, तो उससे क्या है कि बच्चों को जिज्ञासा होगी। उसके बाद पुस्तकालय जो हर विद्यालय में लगभग होती ही है, उसमें वो पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, कोई भी एक पीरियड ऐसा रखें कि बच्चे उसमें अनिवार्य रूप से पुस्तकालय में जाएं और उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर उनको प्रेरित करने के लिए ये आवश्यक है कि वो उनको बीच बीच में जांच करें उसकी, और जो बच्चा अगर पढ़ रहा है ठीक से और आपको लगता है कि ये उससे ग्रहण भी कर रहा है, तो उसको प्रेरित भी करें, पुरस्कृत भी करें।
1: तो मतलब एक पढ़ने की जो आदत छूट गई है और टेक्नोलॉजी जो हावी हो गई है, तो भले ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़े, लेकिन पढ़ने की आदत हमें होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए।
1: अच्छा साहित्य, अच्छी बाल पुस्तकें।

0: जिसमें लेखक लेकर आए हैं उसमें,
1: जी
0: वो बच्चों की आदत में आना
1: हाँ, एक और
0: चाहिए।
1: संकट हो गया है सिंह साहब कि पहले हर अखबार में रविवासरी आया करता था
0: जी
1: और वो इतवार के ही दिन आता था, रविवार के दिन। तो उसमें क्या होता था कि घरों में जैसे अखबार आता था तो जाने अनजाने में बच्चे भी उसको पलटते ही थे, और जब पलटते थे तो उसके अंदर एक बाल कोना भी हुआ करता था। उसमें जो साहित्यिक कोना होता था अखबारों में, तो उसको बच्चे जो है पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद उनको आनंद आता था उसमें। मैंने भी जो लिखना शुरू किया था
0: वो वहीं खींचा,
1: वो
0: अभिरुचि पैदा
1: छोटी
0: हुई।
1: छोटी पत्रिकाओं में पढ़ने के बाद ही शुरू किया था। मुझे लगा कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूं, तो मैंने जो है उनमें लिखना शुरू किया। इसी तरह जो आपके एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं विष्णु प्रभाकर जी, तो उन्होंने तो अपनी आत्मकथा में ही लिखा है कि वे बचपन में दादी की कहानियां सुनते थे और उनका मन कल्पना के पंखों पर उड़ने लगता था। कहानी के अलौकिक आनंद का अनुभव उन्होंने तभी किया था। तो इस तरह से जो अखबारों में साहित्यिक प्रश्न आता
0: वो
1: था
0: बाद में वो अलौकिक आनंद जो है उनके लेखन
1: जी,
0: में आ गया।
1: वो उसमें फिर वरिष्ठ साहित्यकार बने, प्रख्यात साहित्यकार बने उसी को। तो अधिकतर साहित्यकारों का कहना यह है कि हमने अपने बचपन में अखबारों में बाल साहित्य पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद हमको आनंद आया और तब हमने जो है अपनी लेखनी चलाना शुरू किया।
0: अच्छा, इसमें पाठक जी कुछ कविताएं, कुछ कहानियां ऐसी कालजयी हुई जो लोगों ने लिखी जो आज भी कंठस्थ हैं, जैसे हमारे आपके समय के लोग जो हमारे किताबों में आई
1: जी
0: जिनको हम पढ़ते हैं, चाहे वो चंदा मामा की वो हो,
1: जी जी
0: कविता
1: जी
0: हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज लोग, लेकिन अब वो ऐसी चीजें नहीं आ रही जो कंठस्थ हो लोगों के मन पे या जहन पे वो विराजित हो। जैसे आपने कल्पना की बात की कि
1: जी
0: कल्पना के पंखों से हम कहीं भी उड़ के चले जाते हैं, तो वो
1: जी
0: कल्पनाशीलता आज ऐसा लग रहा है कि कहीं कम हो रही है, या हो वो कल्पनाशीलता है तो फिर कहीं दूसरी तरफ जा रही है, उसमें वो चीजें नहीं जो समाज को छूती हुई होती होती उसमें, जो सहज
1: हाँ
0: बाल सुलभ होती
1: जी
0: थी।
1: जी जी दरअसल क्या है कि पहले जो लेखन था उस पर विज्ञान इतना हावी नहीं था। आज जो कंप्यूटर युग है, लैपटॉप युग है, मोबाइल युग है, इसमें बच्चे भी उसी रुचि के हो गए हैं, और जो बच्चे हैं आज के वो बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत तीव्र बुद्धि के हैं। वो पहले जैसे बच्चे नहीं हैं कि उनको कुछ भी सुना दिया और आनंद आ गया। पहले परियों की कहानी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे परियों की कहानी समाप्त होती जा रही है। अब विज्ञान उनके ऊपर हावी होता जा रहा है। आज बच्चा जो है कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है, विज्ञान के बारे में जानना चाहता है, उसका मन अति जिज्ञासु है। तो ऐसी स्थिति में लेखकों ने भी अपना उसी तरह से बदला है लेखन को, जैसे कि
0: संदर्भ बदले
1: जी
0: अब।
1: जी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। अब वो हम लोगों ने तीसरी क्लास में पढ़ी है, तो उस तरह की जो रचनाएं होती हैं अब जो है वो घड़ी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इसके ऊपर लेखक लिख रहे हैं।
0: मतलब जो वर्तमान के संदर्भ में
1: जी
0: वो आज कविता में और लेखन में आ रहे हैं, और
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल आ
0: इसी
1: रहा
0: से
1: है,
0: अपन जुड़ सकते हैं उसमें,
1: निश्चित
0: क्योंकि
1: रूप से
0: वर्तमान के संदर्भों को हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो
1: जी,
0: समसामयिक नहीं हो
1: फिर वो
0: पाएगा, उस
1: समसामयिक नहीं होगा, पिछड़ा हुआ हो जाएगा, और बच्चे उसको ग्रहण भी नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे।
1: क्योंकि बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि के हैं और वो अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। हर चीज को वो प्रश्न करते हैं,
0: जी
1: और बहुत से प्रश्न तो ऐसे भी करते हैं कि हम बड़े लोग भी उनका उत्तर नहीं दे पाते
0: नहीं दे
1: हैं।
0: पाते
1: जी
0: उसमें, तो वो चीजों को जो है देखते हैं, समझते हैं उसमें, तो उन
1: जी
0: चीजों को डालना पड़ेगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको कई चीजों के लिए पुरस्कृत किया गया, तो
1: जी
0: वो चीजें क्या आज का समाज और आज का जो व्यवस्था है उस चीज को रेखांकित कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है? पुरस्कार देने का मतलब ही बढ़ावा देना होता है,
1: जी जी
0: मतलब हमारा जो दायित्व है अगर उसको निभाएंगे तो निश्चित तौर पे
1: जी
0: जो समाज में हो रहे परिवर्तन है उसमें कुछ सकारात्मक भूमिका हमारी
1: जी
0: हो सकती है।
1: जी
0: श्रोताओं, आप थे डॉक्टर दिनेश पाठक सी साहब, आप बाल साहित्य लेखन से जुड़े हैं और समाज के संदर्भों से उसको जोड़ करके वर्तमान पीढ़ी को और आगे की पीढ़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने विचार वाणी से हमारे साथ आए, जुड़े और हमारे श्रोताओं का कुछ मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: नमस्कार।
1: आपका भी सिंह साहब, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, समसामयिक बाल साहित्य लेखन और सामाजिक संदर्भ। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
3: मैं उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
2: प्रदेश के प्रसिद्धी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर जीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन

दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिश्चीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1,683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा

0: डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रुपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित एवी बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येन सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालवे तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें 1 माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवरों, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकारी उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास खंडों में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 दावियों को 21,000 रुपए

0: की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: किसी पर्यावरणविद ने सही ही कहा है कि मैन इज ए वेस्टफुल क्रीचर इन नेचर, जिसका मतलब है प्रकृति में मनुष्य व्यर्थता से परिपूर्ण प्राणी है। वनस्पतियों तथा जीवधारियों के उत्पाद तो किसी न किसी रूप में मानव अथवा अन्य जीवधारियों के लिए उपयोगी हैं, परंतु मनुष्य द्वारा उत्पादित एवं उत्सर्जित किसी भी भौतिक पदार्थ का जीवों व वनस्पतियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। सजीव जगत में मनुष्य का स्थान उपभोक्ता के रूप में ही बना हुआ है, जो खाता है और व्यर्थ पदार्थ अर्थात कचरे का उत्पादन करता है। घरों, भोजनालयों, चिकित्सालयों, कारखानों, अन्य प्रतिष्ठानों अथवा जीवधारियों द्वारा दैनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अनुपयोगी पदार्थ कचरे की श्रेणी में आता है। कचरा दो प्रकार का होता है, एक तो आसानी से व जल्दी अपघटित हो जाने वाला और दूसरी श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जो देरी से अपघटित होते हैं अथवा अपघटित नहीं होते। कचरा कोई सा भी हो, यदि उसका समय पर उचित निस्तारण नहीं किया जाता तो वह हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। रोटी अर्थात भोजन हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जो लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं उनका भोजन तो भारतीय परंपरा अनुसार परिवार की स्त्री सदस्य रसोई घर में बना लेती हैं, परंतु जो लोग पढ़ने, मजदूरी करने या नौकरी पेशे के कारण अकेले बाहर रहते हैं, उन्हें खाने के लिए होटलों या मैसों पर निर्भर रहना पड़ता है। विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा मुसाफिरों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे बड़े कई मैस व ढाबे उपलब्ध हैं। इन मैसों से प्रतिदिन ढेर सारी सब्जियां, रोटियां, चावल, प्लास्टिक के आइटम्स व बर्तन साफ करने का कचरा आदि कूड़े के रूप में फेंका जाता है। जहाँ कई बार घरों के कचरे के निस्तारण की ही समस्या आ जाती है, होटलों, मैसों व कचरे के निस्तारण की बड़ी समस्या है। नगर निगम के कर्मचारी घर घर कचरा लेने आते हैं, आप उनसे बात करके मैस का कचरा उनके सुपुर्द करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इधर उधर फेंका हुआ कचरा उड़कर वातावरण को दूषित तो करता ही है, साथ ही कई पशु इनमें मुंह मारते रहते हैं। झूठे भोजन के साथ साथ प्लास्टिक के बर्तन व थैलियां भी उनके शरीर में चली जाती हैं, जो उनकी मौत का कारण बन जाती हैं। प्रशासन एवं वैज्ञानिकों के लिए ये एक चुनौती है कि अनुसंधानों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था तलाशी जाए जो इस कचरे से ऊर्जा उत्पत्ति अथवा कोई ऐसी ही रचनात्मक विकल्प की तलाश करें। होटल व मैसों के व्यर्थ पदार्थों के निस्तारण के लिए स्थानीय प्रशासन को तो सजगता बरतनी ही है, साथ ही मैस व होटल प्रबंधकों को भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपना नैतिक दायित्व तो समझते हुए व्यर्थ पदार्थों का उचित निस्तारण करावें और अपने नगर के वातावरण को दूषित होने से बचावें। मेरा विश्वास है कि होटल के संचालक और मैसों के संचालक भविष्य में ऐसी योजना बनाएंगे जिससे उनके द्वारा जो कचरा है उसका सही निस्तारण हो सके तथा नगर शुद्धता की छाया में सांस ले सके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था मेसों का कचरा निस्तारण। आलेख और वाचन डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन।

0: केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद है जरा जरा। आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में वार्ताकार हैं दीप चंद्र शर्मा, जनरल मैनेजर रिफाइनरी मथुरा। आपसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है, इसलिए इसको सफर भी कहते हैं, जिंदगी भी कहते हैं। किसी एक घटना से नहीं बनता, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, किसी एक परिस्थिति से नहीं बनता। हजारों संबंध, हजारों व्यक्ति, हजारों परिस्थितियां हैं, मिल करके एक जीवन को आयाम देते हैं। चलते रहने का नाम जीवन है। इसी श्रृंखला में हमने आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में श्रृंखला थी याद है जरा जरा, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके साथ मिलवाया, उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ बांटे। आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं श्री दीपचंद वर्मा जी। वैसे तो वो पेशे से इंजीनियर हैं, जनरल मैनेजर हैं मथुरा रिफाइनरी में, लेकिन मन से साहित्यकार हैं, भाव से साहित्य को जीते हैं, संबंधों को जीते हैं। तो आकाशवाणी और साहित्य की ये जो मिली जुली श्रृंखला अपने अनुभव में, अपने संस्मरणों में बहुत कुछ ऐसा संजोए हुए है, क्योंकि आकाशवाणी से भी उनका नेनाता बहुत पुराना है। और यूँ कहें कि मथुरा आकाशवाणी की जो उम्र है वो शायद वर्मा जी की भी उम्र के बराबर है, ये बाद में आएगा। लेकिन दीपचंद जी, आपका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और ये जानना चाहता हूँ कि आकाशवाणी जिस तरह से जीवन में रची बसी है, भारतीय समाज में, भारतीय लोगों के मन में, आपने भी इसको जिया है, आपने भी इसको देखा है, और बल्कि एक संबंध बना रखा है, तो कुछ ऐसे अनुभव जो आपके आकाशवाणी से जुड़े रहे हों, जो आपको जीवन में संबल देते रहे हों, प्रेरणा देते रहे हों, गुदगुदाते रहे हों, हंसाते रहे, आज कुछ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
2: धन्यवाद सिंह साहब, और सभी श्रोताओं को मेरा नमन। बहुत ही खुशी हो रही है आज इस मौसम में आपसे बात करते हुए। और मुझे एक संस्मरण याद आता, आप जीवन की बात कर रहे हैं कि मैं काफ़ी करीब आकाशवाणी से रहा हूं, और इसके जो कार्यक्रम, एक कार्यक्रम होता था बाल गोपाल
1: जी,
2: और ये मेरा संस्मरण लगभग 3 दशक पहले का है। उस समय यदि आपको याद हो, लिली जी हुआ करती थी, तो उनके साथ में एक अक्सर ये जो कार्यक्रम है बाल गोपाल
1: किया करती थी जी।
2: और उस समय भी कुछ ऐसा ही बारिश का मौसम था जैसे अभी ये चल रहा है मथुरा में, बहुत ही भीना भीना सा और सुगंध वाला। और हम लोग दोनों कार्यक्रम के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी दुविधा ये थी कि बच्चे, तब तक हमारे जो बाल गोपाल थे वो पहुंचे नहीं थे
1: जी।
2: तो उस समय हमारे मन में बस यही भाव थे कि ए बारिश जरा थम के बरस, ए बारिश जरा थम के बरस, हमारे बाल गोपाल आ जाएं तो जम के बरस, पहले न बरस कि वो आ ना सकें, फिर इतना बरस कि वो जा ना सकें। तो जो आकाशवाणी मथुरा के साथ हमारा जुड़ाव है सिंह साहब
1: जी जी,
2: बहुत ही आत्मीयता वाला है। और वैसे भी यदि हम रेडियो की बात करें तो रेडियो एक भावनात्मक जुड़ाव लाती है, एक आत्मीयता इसके साथ होता है, और खासकर आकाशवाणी के साथ जो सत्यता है कि आप जो यहां से सुनेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, आपको जोड़ने वाला होगा, बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ेगा, संस्थानों को विद्यार्थियों से जोड़ेगा। तो वो जो जुड़ाव है वो आकाशवाणी और रेडियो की हम बात करें बखूबी निभा रहा है। 36 में हमारे यहाँ, यदि 1936 की बात करें तब से आकाशवाणी का प्रारंभ हुआ, लेकिन मैं इसको, इस संबंध को और थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। यदि आप देखें सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद रेडियो था
1: जी,
2: उन्होंने पहले जर्मनी और बाद में सिंगापुर से उसको संचालित किया था, तो जो नारा हमारे आजादी के रणबांकुरों के खून में एक उबाल लेकर आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी
1: दूंगा,
2: तो उसका जुड़ाव भी कहीं ना कहीं, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं रेडियो से रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें सिंह साहब, जो हमारा आजादी की वो 14 और 15 अगस्त की रात जब चाचा नेहरू ने पहला संदेश,
1: नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण
2: जी, वो जो ऐतिहासिक भाषण है, तो वो भी रेडियो के द्वारा ही जन जन तक पहुंचा था। उसके बाद की हम बात करें 1971

0: 1971 का वो ऐतिहासिक दिन जब इंदिरा गांधी जी ने एक अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित किया, जाइए और उस पाक की नापाक इरादों को कूट के आ जाइए। तो वो भी रेडियो से ही वो संदेश था। और यदि हम अभी बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, और अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं कि मन की बात, तो वो मन जो है ना वो जिंदगी का जुड़ाव है।
1: जी, जी,
0: और जब जब ये माध्यम, एक ही माध्यम ऐसा है, चूंकि एक तो सर्व सुलभ है, सहज है, सरल है, आप कहीं भी किसी भी रूप में इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और जिंदगी कोई एक सीमित दायरा तो है नहीं, बड़ा बड़ा फलक है। तो उस पूरे फलक में आकाशवाणी और रेडियो पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जी
0: तो,
1: जी मतलब पहले भी थे, आज भी हैं, और शायद रूप स्वरूप कुछ भी रहे, लेकिन रेडियो जिंदा रहेगा, आकाशवाणी जिंदी रहेगी, क्योंकि ये शाश्वत है। और आपने एक घटनाक्रम सुनाया आज़ाद हिंद फौज से लेकर के मन की बात तक का, और अगर इसको और पीछे ले जाएं तो शायद आकाशवाणी पहले भी थी, बाद में भी होती रहेगी। तो ये एक ऐसे संवाद का माध्यम जो जन जन तक जुड़ा हुआ है, सबके मन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद आकाशवाणी का जो मूल उद्देश्य था कि शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी जन जन तक पहुँचे, उसको उन्होंने निभाया, ऐसा आपके वक्तव्य से लग रहा है। तो क्या लगता है कि जो ये समय जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी आपने संबंधों की बात की, दायरों की बात की, आयामों की बात की, अभी हम देखते हैं कि समाज में चीज़ें बहुत उथली हो गई हैं, सतही हो गई हैं, संबंध अब वो नहीं रहे जो पहले भाव के होते थे, चीज़ें एक दूसरे को देख करके हम भावुक हो जाते थे, तरल हो जाते थे, विनम्र हो जाते थे, लेकिन अब कहीं फैलाव हो गया है, हम खटखट के जीवन जी रहे। तो जो जीना छोड़ दिया है, उसमें आकाशवाणी जैसी संस्थाएं आज भी निभा रही हैं। कभी हम एक चलता हुआ गाना सुन लेते हैं तो शायद हमें वो जुड़ाव महसूस करा जाती है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, और बिल्कुल ये बात बहुत दुरुस्त जो आपने भी बोला है कि कहीं ना कहीं हम जीवन का जो हमारा सही तरीका था, जो एक सहज और सरल तरीका था आत्मीयता के साथ जीने का, जुड़ के जीने का, बड़ों को सम्मान देने के साथ जीने का, अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करके जीने का, देने के साथ जीने का, और अभी जो आपाधापी और भागदौड़ की जो जिंदगी, और खासतौर से अभी अभी देखिए व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी, अभी आप देखें कितनी उथल पुथल पूरे पूरे विश्व में है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चोट हमारे सामाजिक संबंध पे पड़ी है, जीवन पे पड़ी है। तो ऐसे में एक ऐसे टॉनिक की जरूरत है कि जो शालीनता से हमारे साथ चले, विश्वसनीयता उसमें हो, आत्मीयता उसमें हो, और सतत हो,
1: जी जी,
0: सहज हो, सुलभ हो। तो आकाशवाणी वही दवाई है जो इस जो आज की जो ये बीमारी है सांसारिक,
1: जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, उसमें सारी जो है विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, तो मिल जाता है।
0: बिल्कुल, आप मतलब आप यदि जुड़े रहते हैं, मैं तो अभी भी आकाशवाणी के साथ और जो आपके कार्यक्रम होते हैं मुझे बड़े ही मनोहारी लगते हैं, दिल को खुश करते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा साहित्य सृजन भी मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी के साथ जुड़ने से बहुत मजबूत हुआ। देखिए अभी जो मैं आपको अभी संस्मरण सुना रहा था,
1: जी जी,
0: वो बच्चों के साथ बैठ के ही उस दिन मेरी कुछ शब्दों को मैंने पंक्तियों में जोड़ा, मैं सुनाना चाहूंगा श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए जरूरी है। और ऐसा ही मौसम, मतलब बारिश की बूंदें, और वो देखिए कुछ शब्द कैसे आकाशवाणी के साथ मैं जुड़ा और उसने मुझे साहित्य से जोड़ दिया।
1: जी जी।
0: पहले ये 4-8-10 शब्द हैं।
1: स्वागत है, स्वागत।
0: मोती सी बूंदें टपा टप,
1: जी
0: चित्र देखिए,
1: हाँ हाँ,
0: मोती सी बूंदें टपा टप, मित्र मंडली छपा छप, जो बाल गोपाल होते हैं, बच्चे जाते हैं,
1: जी जी, खेलते
0: कागज की नाव चलाते हैं, खेलते हैं, और बाद में आके पिताजी और मम्मी के साथ बैठ के वो पकोड़े खाते, तो वही शब्द हैं।
1: जी।
0: मोती सी बूंदें टपा टप, मित्र मंडली छपा छप, कागज की नाव चपा चप, और चाट पकोड़ा गपा गप। तो ये आकाशवाणी
1: जी, मैं इसमें जो भाव भी है, इसमें संबंध भी है, इसमें परिस्थितियां भी है।

0: है और इसमें उसको शायद जीने का और उसके आनंद को आत्मसात करने का अभाव भी है, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है वर्मा जी कि हम जीने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, उसको सहज बनाने के साधन तो जुटा रहे हैं और हम उसकी आपाधापी में काफी कुछ भागदौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन शायद जीना नहीं भूल गए हैं, जीने के मायने भूल गए हैं। तो वो शायद इसीलिए हो रहा है कि जो संबंधों की मिठास थी, संबंधों का जो जुड़ाव था और संबंधों का जो आधार था भाव और जो रस, वो कहीं ना कहीं निकला जा रहा है, वो कहीं छूटता जा रहा है, वो कहीं पीछे होता जा रहा है। हम प्राथमिकता में साधनों को ले आए हैं और जीवन जीने का जो साध्य है उसको भूल गए, तो साधन प्रमुख को साध्य गौण हो गया है। तो इसमें जो आप जैसे जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, जब लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो लोगों तक मैसेज जाता है, तो कुछ ऐसा आपने लिखा हो संबंधों के बारे में, जिंदगी के बारे में, जो हमारे
1: नहीं
0: साथ
1: नहीं आप
0: श्रोताओं के साथ
1: बिल्कुल
0: जी।
1: सही बोल रहे हैं, और बड़ा ही मन व्यथित होता है जब आप सुबह का अखबार उठाते हैं और उसमें खबर पढ़ते हैं कि एक बच्चे ने अपने भाई को, अपने पिता को
0: हाँ
1: और अपने संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया। किस लिए? सिर्फ अर्थ के लिए।
0: अर्थ के लिए,
1: किस किस लिए?
0: हाँ,
1: सिर्फ धन के लिए।
0: धन
1: और बड़ा ही एक अंदर से विचलित हो
0: हाँ,
1: जाते हैं
0: कि
1: जब
0: हम
1: सुनते हैं
0: किस
1: कि
0: कैसे समय और समाज
1: कैसे
0: में जी रहे
1: कैसे
0: हैं
1: कि
0: जी।
1: एक हमारी बेटी जा रही है और उस बेटी को दरिंदों ने, समाज के दरिंदों ने पकड़कर अस्मत पे हमला किया। जब सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे युवा नशे के आदि हो गए हैं, जब सुनते हैं कि उसने इतना भ्रष्टाचार किया कि एक क्लर्क के घर में 200 करोड़ का संपत्ति, तो ये कहीं ना कहीं जो खुद से संबंध थे, परिवार से संबंध थे, अच्छाई से संबंध थे, समाज से संबंध थे, वो उसका विकृत रूप है।
0: जी, मतलब उनको
1: तो
0: छोड़कर के ही ये कर पाया
1: उनको
0: शायद,
1: छोड़ गया। जी
0: अगर
1: जी
0: उनको जी
1: हाँ
0: रहे
1: जी
0: होते, हम
1: जी जी
0: संबंधों को जी रहे
1: जी रहे
0: होते,
1: होते
0: परिवार
1: तो
0: को जीते रहे
1: जी
0: होते, शायद वहां हम नहीं पहुंच
1: वहां
0: पाए।
1: वहां उतनी दुर्गति शायद
0: हाँ,
1: मानवीय
0: संबंधों की
1: संबंधों की
0: नहीं
1: नहीं होती।
0: होती जी।
1: वो मैं संस्कृत, मुझे याद आ रहा है कि जब हम कक्षा 6 4 5 में थे कि येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा,
0: धर्मम
1: ते
0: जी,
1: मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण
0: रूपेण
1: मृगाश्रन्ते।
0: मृगाश्रम,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उन सब गुणों को छोड़कर वो कहीं ना कहीं काफी लोग, सब तो नहीं क्योंकि
0: अभी भी
1: अभी भी वो
0: समाज का बहुत
1: मानवता
0: बड़ा वर्ग
1: बाकी
0: है जो
1: है वो का,
0: समझ
1: हाँ
0: जी रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं वो जो अच्छाइयाँ थी जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते हैं, जो हमारी अच्छी संस्थाएं वो भी बताते हैं, और जैसे आकाशवाणी और हमारे जो ये ऐसे माध्यम है वो भी हमें बीच बीच में सचेत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे हमारा विलगाव हुआ, उनसे दूर हुए तो हम इस तरफ आ गए। तो अब बात संबंधों की आती है, तो बात संबंध एक खुद का, खुद से भी है, खुद को जानना, परिवार से भी है, लेकिन एक उससे भी बड़ा संबंध होता माँ का संबंध है। और यदि मैं राष्ट्रमाता की बात करूं, अपने देश की बात करूं, और देश में भी अपने सिपाहियों की बात करूं, उन रक्षकों की बात करूं जो सीमा के प्रहरी हैं, तो वो कैसे संबंधों का निर्वाह करते हैं,
0: जी,
1: उसी
0: स्वागत
1: पर मेरी एक
0: स्वागत स्वागत जी,
1: कविता
0: बिल्कुल।
1: है। मैं श्रोताओं को नमन करते हुए और ये आशा करते हुए कि श्रोताओं जहां भी आप वर्दी को देखें, तो मेरी एक गुजारिश है आकाशवाणी के इस मंच से, एक प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप उनको सल्यूट
0: जी
1: कीजिए,
0: जी जी
1: उनको
0: जी
1: वो आदर
0: उनके
1: दीजिए
0: जज्बे को, उनके
1: जिसके वो
0: वो
1: अधिकारी
0: त्याग
1: हैं,
0: को सलाम कीजिए।
1: क्योंकि आप सुरक्षित हैं इसलिए कि वो सीमा पर खड़े होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप अपने तीज त्योहार मना पाते हैं चूंकि वो त्योहारों पर नहीं आते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन मना पाते हैं चूंकि वो अपने बच्चों का जन्मदिन भूलकर वहां पर रहते हैं। तो
0: जी,
1: वो जो उनका
0: फर्ज है,
1: बलिदान है,
0: वो
1: फर्ज
0: जो
1: है,
0: है,
1: जो
0: जो
1: जिंदगी जीने
0: कर्तव्य
1: का
0: है
1: जो
0: जिसको वो
1: कर्तव्य
0: जी
1: है,
0: रहे हैं जी।
1: जिसको वो जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो उसी में मेरी ये
0: स्वागत
1: कविता थी।
0: जी।
1: एक जो सैनिक होता है उसकी शपथ ये है, सैनिक की शपथ, जब तक मेरे लहू का कोई कतरा बाकी है, कतरा
0: जी,
1: एक बूंद
0: बूंद
1: बोल
0: बूंद
1: सकते हैं,
0: जी।
1: बिल्कुल सिंह साहब ने सही बोला, जब तक मेरे लहू का कोई कतरा बाकी है, जब तक मेरे वतन पर कोई खतरा बाकी है, सौगंध धरा की पिताश्री, सिंह साहब वो पिताई से मुखातिब हो रहा है
0: जी जी
1: सिपाही, सौगंध धरा की पिताश्री, लौट के फिर फिराऊंगा ऊंचा रहे तिरंगा, मैं ध्वज स्तंभ बन जाऊंगा,
0: क्या बात,
1: मैं ध्वज स्तंभ बन जाऊंगा। सीट साहब आगे वो

0: माँ की तरफ इशारा करके बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: रीढ़ तोड़ दी थी दुश्मन की, रीढ़ तोड़ दी थी दुश्मन की, मां पर जब आघात हुआ पानी उसने भी मांगा दुश्मन के जो साथ हुआ। लाज मैंने राखी माटी की, लाज मैंने राखी माटी की, शिक्षा थी जो पाई अंतिम क्षण तक लड़ा अडिग, गोली सीने पर खाई, गोली सीने पर खाई।
1: मतलब कोई छोड़ के नहीं जाना
0: है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं बात अभी सिंह साहब कर रहा था, जो मैं श्रोताओं से भी मैं मुखातिब हो रहा था, कि वो है जिसकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। तो अगले वाली पंक्ति वही है, वो बच्चा चूंकि बार बार शिकायत कर रहा था कि पिताजी आप या माताजी जो भी हमारे यूनिफॉर्म में लोग हैं आप नहीं आ पाते हैं, तो उन्हीं को समझाते हुए बोल रहा है वो हमारा रक्षक सिपाही कि शादी शगुन मुहूर्त क्रिसमस, शादी शगुन मुहूर्त क्रिसमस, ईद दिवाली और बैसाखी, मेरा देश उत्सव में नाचे, देश मेरा उत्सव में नाचे, मैं सदा पहन रखता था खाकी। याद मुझे था तेरा जन्मदिन, याद मुझे था तेरा जन्मदिन, मेरे बच्चे आना चाहता था। बालक चूंकि शिकायत कर रहा है भावुक हो जाता है। याद मुझे था तेरा जन्मदिन, मेरे बच्चे आना चाहता था, पर रहे सुरक्षित लाखों लाड़ले, यूं अति व्यस्त खुद को पाता था। अति व्यस्त खुद को
1: प्राथमिकता है, जीवन की प्राथमिकता
0: है, संबंधों की प्राथमिकता है, किसको हमें तरजीह देना है। अब बहन बड़ा ही मुश्किल होता
1: ना,
0: है एक बहन के हाथ में,
1: बड़ा करुणामय संबंध,
0: करुणामय राखी का धागा हो और कलाई कहीं ना दिखाई दे, तो उसको समझाते हुए मेरा सिपाही बोल रहा है, देश का रक्षक, धागा राखी का बहना, सिंह साहब श्रोताओं, धागा राखी का बहना, तुम यूं ही भेजते रहना,
1: क्या बात,
0: भाई तेरा सीमा का रक्षक, भारत माँ का गहना। मैं हूं ना हूं, मेरे साथी वहां पर कलाई के साथ मौजूद,
1: कोई ना मेरे रूप में कोई ना कोई,
0: कोई ना कोई है, भाई तेरा सीमा का रक्षक, भारत माँ का गहना। अब एक नए शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे, कल्प वृक्ष सहचरी के लिए, चूंकि वो है जिसकी वजह से वो वहां खड़े होते हैं, कि सच है सुख वह दे नहीं पाया, श्रोताओं सच है सुख वह दे नहीं पाया, कल्प वृक्ष हे सहचरी, कल्प वृक्ष हे सहचरी, और वर्दी उसको पहना देना। इस पंक्ति पे मेक जान है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वर्दी उसको पहना देना, घर आए शेर या कोई परी, घर आए शेर या कोई परी। अंतिम चार लाइनें हैं, देखिए क्या लगाव है जिंदगी से, किस तरह जीता है मेरा सिपाही संबंधों को। नमन तिरंगे को करता था, श्रोताओं नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, आगे तक का प्रण ले रहा है, नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, कभी ना पीठ दिखाऊंगा, चल ना सका इन कदमों पर। श्रोताओं इन दो पंक्तियों में पूरा सार है, और मुझसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे वो लोग जिनके घर में सिपाही हैं, देश के फौजी हैं, कि नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, कभी ना पीठ दिखाऊंगा, और चल ना सका इन कदमों पर, सिंह साहब चल ना सका इन कदमों पर, तो लिपट तिरंगा आऊंगा, मैं लौट के फिर आऊंगा, संबंध सभी निभाऊंगा, मैं लौट के फिर आऊंगा। तो ये बात संबंध चाहिए,
1: हम किस तरह के संबंध जी रहे हैं, उन संबंधों के को किन चीजों से सींच रहे हैं, उसमें शायद धन आवश्यकता तो हो सकती है, जरूरत भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं हो सकती कि हम समाज से, लोगों से और राष्ट्र से, जो आपने बात रखी कि उन संबंधों को भूल करके उन आयामों में पहुंच जाएं, उन परिस्थितियों में पहुंच जाएं, जहां आपने एक व्यक्ति होने के नाते भी जो हमको कष्ट होता है, दुख भी होता है, और अच्छा भी नहीं लगता कि हम किस समय और समाज में जी रहे, तो वहाँ पर फिर लौट के आने के लिए फिर कुछ बड़ा, वर्मा जी हम मानते हैं कि जीवन में कुछ तो प्रेरणाएं हों।

0: अब वो एक समय ऐसा भी आ रहा है कि शायद हमारे आसपास वो प्रेरणाएं नहीं है जीवंत रूप में,
1: जी
0: तो फिर वहाँ साहित्य मदद करता है, आप जैसे साहित्यकार मदद करते हैं, और ऐसी जो रोशनियाँ जो हमें इधर उधर दिख जाती हैं अच्छी लोगों के रूप में, वो मदद करती हैं, लेकिन देखने के लिए वो आँख और वो थोड़ा सा प्लॉट तो चाहिए, कम से कम वो नज़र चाहिए। चीज़ें अभी भी हमारे आसपास है, इतना कुछ बिगड़ा नहीं है
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही
0: जी।
1: कहा आपने। और भारतीयता में तो ये कूट कूट के भरा हुआ है। आप हमारे सारे ऋषि मुनियों को देख दीजिए कि लोग अपनी अस्थियां तक दान कर देते हैं दूसरों के
0: बिल्कुल
1: लिए।
0: जी।
1: और यदि आप रामायण का देखें, महाभारत का देखें, हमारे जितने भी वेद पुराण और साहित्य जो पुराने हैं उसमें देखें, वो सारी बातें कही गई हैं। बट अब हुआ क्या है कि उनको हमने किनारे किया। हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे, यानी हम जो संयुक्त परिवार से थे, एकल परिवार की तरफ आए। और सबसे बड़ी बीमारी, जो सुविधा के साथ साथ मैं बीमारी इसको बोलता हूँ, मोबिलिटी, जो मोबाइल और ये सब चीजें, आज तकनीकी का अति उपयोग, सदुपयोग हो लेकिन तकनीकी आपको आपके ऊपर नियंत्रण कर ले,
0: हाँ,
1: हावी
0: आप
1: हो
0: उसके
1: जाए।
0: साथ हैंडल होने
1: हैंडल,
0: लगे
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: आप उसके आदी हो
1: जी जी
0: जाएं।
1: जी
0: दो लोग बैठे हुए हैं अभी, एक जैसे पेपर में एक दृश्य हम पढ़ रहे थे
1: जी
0: कि एक टेबल है, उस पर चार परिवार के लोग बैठे हैं
1: जी
0: और चारों ही लोग मोबाइल पे कहीं दूर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिनसे बात कर रहे हैं जब शायद उनके पास होंगे तो दृश्य वही होगा, चीज़ें वो होंगी, फिर वो वहाँ नहीं होंगे। तो व्यक्ति जहाँ है वो उस वर्तमान को नहीं जी रहा, उन परिस्थितियों को नहीं जी रहा, वो कहीं आभासी जीवन में है, वो
1: बिल्कुल,
0: आगे पीछे बहुत है लेकिन वर्तमान में उसकी चीज़ें छूट रही हैं उसके साथ साथ।
1: मैं बिल्कुल सहमत हूं। और यही यही मेन कारण है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, आज की ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन हमारे जो अपने हैं, मैं जो खुद हूं, मैं क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने कार्यस्थल के प्रति, हम कहीं ना कहीं उनको भूल गए हैं। और उस दौरान ही ये सब जितना भी आप विकार देख रहे हैं वो सब देखिए। एक बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया कि घर में चार व्यक्ति बैठे हुए हैं तो आपस में बात करने के लिए सीधे बात नहीं करेंगे। एक उस कमरे में, एक उस कमरे में, सासू माँ इधर हैं, बहू जी इधर हैं, पति जी उधर हैं, बेटा जी इधर है, तो सब पास हैं
0: नहीं,
1: लेकिन
0: खाने की टेबल पे भी चार बैठे हुए लोग वो अपने अपने मोबाइल में किसी दूसरी दुनिया में।
1: तो हंसी जरूर है लेकिन बड़ी ही
0: हाँ, दुखद
1: बहुत दुखद
0: परिस्थितियाँ,
1: स्थिति
0: और
1: है।
0: शायद इसीलिए कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं कि हम कर सकते हैं तब भी उतना नहीं कर
1: नहीं
0: पा रहे,
1: कर पा रहे
0: संबंधों को जी सकते हैं तो
1: जी,
0: भी नहीं
1: तो
0: जी
1: भी नहीं
0: पा
1: जी
0: रहे,
1: पा।
0: और फिर कुछ वो समाज में घटनाओं के रूप में, जानकारी के रूप में, न्यूज़ के रूप में ऐसी
1: जी
0: चीजें आती हैं कि अरे वो सब कुछ था
1: जी
0: लेकिन अंत में अकेले ही चले गए, वो लोग संग नहीं थे, वो परिस्थितियां संग नहीं
1: बिल्कुल
0: थी,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कहीं ना कहीं चीजें रह जाती हैं। तो
1: हाँ
0: कुछ ऐसा अपने संबंधों के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो जिंदगी को जो कुछ दे सकता हो तो चलते चलते
1: नहीं नहीं
0: श्रोताओं के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बच्चा है, बड़ा एक प्योर फॉर्म में होता है, उसको हमें जिंदा रखना है, हमें लौटना है अपनी उन सब चीजों की तरफ जो हमारे पास है। भारतीयता में के तो मूल में ही सब है, करुणा, दया, प्रेम, संबंध, ये सब
0: और
1: है।
0: सबसे बड़ा
1: और
0: देने का भाव,
1: देने का भाव, देने का भाव,
0: शायद
1: जी
0: लोग उसको
1: जी
0: भूल गए
1: भूल
0: कि
1: गए हैं
0: देने का
1: जी।
0: जो सुख है,
1: हाँ हाँ जी
0: अभी हम पढ़ रहे थे कि
1: जी
0: देने का जो सुख है शायद सबसे बड़ा सुख है,
1: सबसे जी जी जी
0: लेने में जो सुख नहीं है, देने में
1: जी
0: सबसे बड़ा सुख
1: हाँ
0: है, और पहले उसी को ऊपर रखते थे कि
1: जी
0: भैया बुजुर्ग भी ये बताते थे कि कभी आपका हाथ यूं नहीं होना चाहिए, वो यूं ही
1: ऐसे
0: रहेगा,
1: होना
0: ऐसे
1: चाहिए।
0: नहीं
1: हाँ नहीं,
0: होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बोला
0: ऐसे संबंधों में हम जी करके कुछ समाज को दे
1: नहीं,
0: सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: कोई
1: हाँ
0: शब्द
1: जी जी
0: जी
1: और
0: जी
1: बिल्कुल सही आपने बोला कि देखिए दो चीजें हमारे, मतलब यदि आप इस विश्व में आने की बात करें, आप कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किस परिवार में आएंगे, कितने बजे आएंगे, वो आपके नियंत्रण
0: हाँ
1: में नहीं।
0: हाँ
1: जाने का समय
0: जा
1: आपका
0: रहा
1: कुछ पता नहीं है कैसे जाएंगे, लेकिन ये बीच का जो अंतराल है
0: हाँ, वो
1: ना,
0: आपका है।
1: मैं श्रोताओं, खासकर मेरे जो यंग बॉयज हैं, बच्चे हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लक्ष्य रखो, अपने आप को जानो, पहचानो और जिंदगी को एक बड़े उद्देश्य के साथ जियो, कभी भी चिंता करके, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, जीवन का कोई रीटेक नहीं है। जिंदगी को जियो बिना
0: बहुत बोझ की
1: बहुत
0: है,
1: बोझ के साथ मत,
0: क्यों जी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: सहज
1: बिल्कुल।
0: रूप
1: और
0: से।
1: यही मेरा विषय भी है जैसा सिंह साहब।
0: जी,
1: तो श्रोताओं,
0: बोझिल जिंदगी नहीं
1: हाँ, बोझिल
0: चाहिए,
1: जिंदगी,
0: सरल
1: तो ये
0: सहज
1: यही
0: जीवन
1: शीर्षक है
0: चाहिए।
1: इन लाइनों का, जियो जिंदगी, है जिंदगी अनमोल प्यारे, जरा मुस्कुरा दे,
0: क्या बात है।
1: है जिंदगी

0: जिंदगी अनमोल प्यारे जरा मुस्कुरा दे, काहे ढोए बोझा। आप बात करें
1: क्या बात है,
0: काहे ढोए बोझा तनाव गड्ढे में गिरा दे। है जिंदगी अनमोल प्यारे जरा मुस्कुरा दे, काहे ढोए बोझा तनाव गड्ढे में गिरा दे। खट खट के मरता है क्यों रे चिंतामणि, तूने मानव देह पाई तू है सबसे धनी। देखिए प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सूरज हंसे धरती हंसे, हंसते चांद सितारे, तू भी खुल के हंस ले प्यारे, हो जाएंगे वारे न्यारे। और हर शाम के बाद दिन आता है, ढल जाएगी शाम अंधेरी, ढल जाएगी शाम अंधेरी, नई सुबह आएगी, हर पतझड़ के बाद बसंत है, कोयल पुनः गाएगी। और हार जीत सुख दुख जीवन के, हार जीत सुख दुख जीवन में, सिक्के के दो पहलू, बड़ा लक्ष्य भी मिल जाएगा एक कदम तो चल तू।
1: क्या बात,
0: बड़ा लक्ष्य भी मिल जाएगा एक कदम तो चल तू।
1: जी तो श्रोताओं, जीवन इसी का है, एक पल इधर एक पल उधर, एक कदम इधर एक कदम उधर। तो जैसे धारा चलती है, सरिता चलती है, नदी चलती है, दो किनारे रहते, तो ऐसे ही कुछ जीवन भी चलता रहता है। उसको बोझिल नहीं बनाना, सरल रखना है, सहज रखना है, आसान रखना है, और जैसा दीपचंद जी ने कहा कि उसको जीते जाना है। शब्दों के मायने, संबंधों के मायने, सब सध जाते हैं अगर आप सहजता में सब कुछ जी जाते हैं। तो चलते चलते कुछ कहना चाहें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, कुछ और संस्मरण जो संक्षेप
0: नहीं, बस मैं श्रोताओं से यही गुजारिश करूंगा कि आप जिंदगी को जिए
1: जी,
0: अच्छे से जिए, लोगों के साथ मिलकर जिए, अच्छाई के साथ जिए
1: जी जी।
0: और जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू
1: जी जी जी जी। तो बड़े उद्देश्य के साथ जीवन जिए। दीपचंद जी आप आए हमारे श्रोताओं से जुड़े विचार से, वाणी से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सिंह साहब, और श्रोताओं को एक बार पुनः नमन। आकाशवाणी को ढेर सारी बधाइयाँ इतने सारे दशक पूरा करने के लिए, और आशा है और उम्मीद है कि नई तकनीकी के साथ, एआई के साथ, नए जोश के साथ, भले ही टीम हमारी छोटी हो गई है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, हम लोग
1: ऐसे ही सफर चलता रहेगा,
0: चलता रहेगा और आपसे बातें करते हैं।
1: एक बार पुनः आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है, इसलिए इसको सफर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद है जरा जरा, आकाशवाणी के 90 साल होने के क्रम में वार्ताकार दीपचंद्र वर्मा, चंडल मैनेजर रिफाइनरी मथुरा, और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था शोर। और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म आराधना में।

जगजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म अर्थ में, और आगे सुनते हैं किशोर कुमार आशा भोसले को, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल में, और सुनते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को फिल्म ताजमहल में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कटी पतंग में।

आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म नया दौर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फॉरेन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

0: तो आखिर आप भी आ ही गए।
1: आइए, आपका इंतजार था।
0: तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: और आज छत्तीसगढ़ की भाषा में कौन सा गीत सुनाने वाले हैं?
2: वैसे तो बहुत सारे गीत हैं।
1: हाँ पर
2: तो
1: वो रिपीट मत करना जो वो नौलखा हार वो बाजार वो वाला, कौन सा गीत सुनाया था आपने पहले? हाँ कोई और सुनाइएगा नया। हाँ
2: भैया छोड़ जा पंछी उड़ा थे आकाश करते बिरखा मवास धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहारे पंछी रावे कहारे।
1: जी बहुत सुंदर गीत है। मुझे जितना समझ में आया कि ये कुछ हमारे पर्यावरण से, पृथ्वी माता से, पंछियों से, वृक्षों से जुड़ा हुआ कोई गीत था। सही रूपांतरण तो आप ही बता पाएंगे कि इसका क्या अर्थ था।
2: मूल रूपांतरण ये है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, अपना घर अपना गांव को छोड़कर बाहर मतलब नहीं जाए, मतलब इस तरह से बताया गया है कि अपना जो काम होता है, घर होता है, वो हर स्थिति में बेहतर होता है।
1: बहुत सुंदर बात कही इस गीत के माध्यम से, और बेहतर बात पर बेहतर गीत क्या पसंद रहेगी आपकी?
2: फिल्म है सच्चा झूठा और गीत की बोल है रोज आती हो तुम ख्यालों में।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, यही ना?
2: हाँ जी।
1: चलिए
2: क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था, दो मोबाइल से मैं लगा रहा था आकाशवाणी गुणा एक में आकाशवाणी मथुरा, गुणा में जैसे ही बात समाप्त होने वाला था इसमें कॉल उठ गया।
1: हाँ क्या बात है, आज तो बल्ले बल्ले आपकी।
2: ऐसे कॉल तो हो ही जाते हैं आज।
1: अरे वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फोन करने के लिए, धन्यवाद।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: जी मांगीलाल जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हैं जिला गुना से बोल रहा हूँ बहन।
0: कैसे हैं मांगीलाल जी?
1: बस बढ़िया हूँ बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से।
0: बस बढ़िया ही रहने चाहिए भगवान की कृपा से और हम सभी की दुआओं से। हर आदमी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। जी सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना? तो यही कामना हमारी हमेशा रहने चाहिए। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: तो आज फिल्म संजू का गाना सुनवा देना।
0: कौन सा?
1: बदली से निकला है चांद।
0: परदेसी पिया
1: जी? जी
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
0: कैसे हैं मनोज जी?
1: बस दीदी बढ़िया हैं, कृपया बंसी बारी की, बहुत बढ़िया हैं दीदी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए, हमारे सभी श्रोता एकदम आनंदित रहिए। क्या चल रहा है आजकल?
1: बस दीदी शॉप पर काम कर रहे थे
0: जी,
1: तो काम करते करते फोन भी लगा रहे थे।
0: क्या काम कर रहे थे
1: जी? दीदी मेरा व्यवसाय है कपड़े वाले, सिलाई मशीन चलाता हूँ दीदी, मैं टेलर हूँ दीदी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया चल रहा है आपका काम?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए, तो बढ़िया काम बढ़िया बात, फिर एक बढ़िया सा गीत आपकी पसंद का, तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: आश्रमादो फिल्म का नाम रहेगा, गोरा और काला मूवी में एक गाना है, धीरे धीरे कोई सुनना ले।
0: ठीक है, सुनिए पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? परिचय दे दीजिए।
1: पांडे बोल रहा हूँ। दो लाइन पहले सुना दूँ?
0: सुना दीजिए।
1: खुशी नहीं थी मेरी किस्मत में, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पर हंसता है जमाना, ये जमाने का दस्तूर है। आदरणीय रश्मि शर्मा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल प्यार भरा नमस्कार विजय जी, और उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, सभी के साथ स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे।
1: जी जी जी
0: जी। तो विजय पांडे जी, बहुत दिन बाद में आज आपसे बात हो रही है कार्यक्रम में, क्योंकि कई बार हमारे श्रोताओं का फोन हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता और वो हमसे नहीं जुड़ पाते, तो चलिए फोन कनेक्ट हो गया है, आपसे बातें भी हो रही हैं, और आज कुछ खास बात कहना चाहेंगे?
1: आप यही कहना चाहेंगे कि इस समय धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बढ़ गई है,
0: बिल्कुल
1: पाने के लिए कहीं बाहर ना निकले।
0: जी जी जी, बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। जी बिल्कुल, और पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करते रहें, और बिल्कुल सुनते रहें कार्यक्रम हमारा हेलो आकाशवाणी। तो आज क्या पसंद रहेगी विजय जी?
1: गीत के बोल है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये गाने राजू लबानिया, चौधरी महेंद्र सिंह और टेक चंद्र अग्रवाल जी के लिए समर्पित रहेगा।
0: चलिए सुनिए पसंद का ये गीत। आपने फोन किया।

0: हेलो आकाशवाणी
1: मैडम जी को मेरा सादर नमस्कार।
0: सादर नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे, बहुत अच्छे हैं
0: जी। तो
1: आप बताओ आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम भी बढ़िया हैं। और आप अपना परिचय भी दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं महेश चंद, वेज रेडियो श्रोता में सदर बाजार मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, तो महेश जी इस समय जैसा कि अधिक मास चल रहा है, चारों तरफ अभी जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, कहीं जल की सेवा, कहीं शरबत की सेवा, कहीं और खाद्य पदार्थ सामग्री का वितरण किया जा रहा है, आपके सदर क्षेत्र में क्या स्थिति है?
1: जी हमारे सदर क्षेत्र में स्थिति मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है वितरण की। यहाँ पे यहाँ के जितने भी ये लोग हैं जो भगवान से आस्था रखते हैं, ये खुद यहाँ से जाकर के अपने प्रभु के चरणों में गोवर्धन बिहारी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसी में ही ये सहयोग करके प्रभु के आस्था को बढ़ा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया। बस कुल मिला के अधिक मास पुण्य फल कमाने का मास है। इस मास में भक्ति भाव से ओतप्रोत श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और परिक्रमा देकर हमारे ठाकुर द्वारों में दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और हमारे कुछ श्रोता हैं जो आनंदित हो जाते हैं आकाशवाणी में अपनी पसंद का गीत सुनने से भी। तो आज आपकी क्या पसंद रहेगी?
1: मैडम जी आज मेरी पसंद होगी फिल्म कुर्बानी का गीत। हम चाहते हैं

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: पेश है फिल्म संगीत का
1: कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, आज आपके साथ में हूं आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होते ही बच्चों के कई सारे प्लान हो जाते हैं और प्लानिंग में आप बताएं क्या क्या करते हैं। बिल्कुल जी हाँ साथियों, आज के बच्चे हैं, बिल्कुल आजकल के बच्चे ना कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ, नानी का घर तो है ही, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टारगेट तो नानी का घर ही होता है। धूम मचाते हैं लेकिन उसके साथ साथ गीत भी गुनगुनाते हैं।

RSTUVWXYZ। जी हाँ साथियों, ये गीत ना ऐसा लगता है जैसे गर्मियों के लिए ही बना है, और जब छुट्टियां होती हैं ना, तो और जब सब लोग अपने नानी के घर जा रहे होते हैं, लगभग तो यही गीत गुनगुनाते हुए जाते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे समर वेकेशन में नानी के घर के बाद क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना समर वेकेशन जो होता है ना, एक टारगेट कर दिया जाता है एक्टिविटीज़ के लिए। पहले से ही बच्चे प्लान करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, जैसे डांसिंग है, आर्ट है, ड्राइंग है, स्विमिंग है। स्विमिंग तो सर्वोपरि हो गई है, क्योंकि क्या होता है ना, स्विमिंग से तो बॉडी फिटनेस हो जाती है, और दूसरा गर्मी में अगर बच्चे स्विमिंग करेंगे पानी में, तो उनको गर्मी भी नहीं लगती है, मज़ा आता है, उनको आनंद लेते हैं स्विमिंग करके, है ना। तो क्या है ना कि सिर्फ आनंद लेना ही मकसद नहीं है, बहुत सारी सावधानियों के साथ में आनंद लेना चाहिए। जी हाँ, करेंगे आपसे स्विमिंग पर ही बातचीत ये गीत सुनने के बाद।

समर में एक्टिविटीज की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन जो बात कही गई स्विमिंग पूल के बारे में, तो पूल में जब बच्चे जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की जो सुरक्षा है उसके लिए और स्वास्थ्य दोनों के बचाव के लिए। जी हाँ साथियों, जब भी आप पूल में बच्चे को उतार रहे हैं या आप खुद उतर रहे हैं, तो कम से कम 20 मिनट पहले वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन जरूर लगा लें। ये क्या करेगा कि स्किन को यूवी रेज से नुकसान होने से बचाता है, क्योंकि यूवी रेज आजकल जो गर्मी का माहौल हो रखा है ना, ग्लोबल वार्मिंग वाला, उसमें यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं। तो वो हमें, अगर हम पूल में जा रहे हैं और क्योंकि धूप होती है, जरूरी नहीं है कि इवनिंग टाइम ही हमको मिले, तो वैसे भी आजकल क्या होता है ना, वाटर पार्क बहुत बने हुए हैं, तो बच्चे उसमें बड़ा एंजॉय करते हैं, उसमें भी निकल जाते हैं आनंद लेने के लिए। तो कहीं भी अगर आप सीख रहे हैं या फिर स्विमिंग का एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही उठाइएगा कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं, जो कि आपको यूवी रेज से नुकसान पहुंचाने से अवश्य रोकेगी।

गर्मियों के मौसम में बात हो रही है स्विमिंग की, और स्विमिंग में हमने बात की स्किन की। स्किन के बाद साथियों एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आँखें। आँखें हमारे स्किन, हमारे जो बॉडी है उसका एक मेन पार्ट होता है, जिससे हम सारी दुनिया का नज़ारा देखते हैं। जी हाँ, तो आँखों को बचाना तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है ना। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारा चेहरा, जब हम स्विमिंग के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान खास रखना पड़ेगा कि आँखों में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पूल का जो पानी रहता है ना उसमें क्लोरीन रहता है, और क्लोरीन से आंखों में आपको जलन हो सकती है, आंखें आपकी रेड हो सकती हैं, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं। तो वो ना हो इसके लिए सनग्लासेस का यूज़ ज़रूर करें। आपने देखा होगा जब बच्चे सीखने जाते हैं तो उनकी जो स्विमिंग ड्रेस होती है उसमें उनको सनग्लासेस ज़रूर मिलते हैं। तो आप आँखों पर चश्मा ज़रूर लगाएं, जिससे कि आंखों में पानी ना जाए, आपकी आंखों का प्रोटेक्शन बना रहे। इसके साथ साथ टोपी ज़रूर लगाएं। आप क्या होता है ना, जब भी हम स्विमिंग में उतर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिसका ध्यान रखना ही होता है, आनंद के साथ साथ सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें, तभी तो हम गीत गुनगुनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आज का टॉपिक हमने लिया है गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की एक्टिविटीज, और साथियों एक्टिविटीज में आज हमने पहला टॉपिक ले लिया है स्विमिंग का। जी हाँ साथियों, स्विमिंग एक बहुत जरूरी एक्टिविटी है आज के समय में, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, गर्मी बहुत है तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है पानी में रहने में, और अच्छा क्यों ना लगे। दूसरा क्या होता है ना, बच्चों की जो बॉडी होती है उसमें मूवमेंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे कि उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। तो हमने बात की अभी तक स्किन सन और स्किन की आंखों की है ना, चेहरे की। अब इसके बात करते हैं जब हम पूल में जा रहे हैं और फिर बाहर आ रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों सिचुएशंस में क्या करना है। शावर से नहाना है, बिल्कुल। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में ना शावर लगे ही रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? इसीलिए कि आप पहले जब पानी में उतर रहे हैं ना, उससे पहले एक बार जरूर शावर लें, और जब आप स्विमिंग कर चुके हैं तो वापस जाएं और एक बार शावर फिर से लें। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितनी भी क्लोरीन आ चुकी है ना, या फिर अन्य केमिकल जो होते हैं, क्योंकि पानी को साफ करना रहता है ना, तो इसके लिए जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी को टच करते हैं, तो बालों में, अपनी आंखों में, कहीं भी जैसा होता है तो वो हट जाती है। तो इसके साथ साथ हमें ये काम, शावर का काम जो है, शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है ना, क्लोरीन जो होती है वो बालों को रूखा कर देती है, तो इससे बचने के लिए हमें सिलिकन जो स्विम कैप होती है ना, वो जरूर लगानी होती है। हमने जिक्र किया इस विषय पर। तो स्विमिंग का मज़ा जरूर लें, आनंद जरूर लें, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 12 बज रहे हैं, आरंभ करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और SMS। साथियों, संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम गीत बात और SMS में। आज कार्यक्रम में आपके साथ में हूँ चंद्रा खत्री। संदेश पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल जी का। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम और समस्त हाशमी परिवार, आप सभी अजमेर शरीफ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। रायगढ़, छत्तीसगढ़, सौरभ, प्रकाश, बल्लू, निषाद और बच्चों की जोली तरुण श्री, निक्का और निजाम। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं सोपान तायरे, वसंत राव, PS नवाकर, तुषार करागले, सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा, आप सभी गांधीनगर

गुजरात से कार्यक्रम सुन रहे हैं। तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, आप सभी का स्वागत। आप सभी दिल्ली से जुड़े हैं। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव परिवार ललितपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सभी परिवार वालों को धन्यवाद। आप जुड़ रहे हैं लग्जर हरिद्वार से, महराज जहां, गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल दादरी गेट भिवानी से, राहुल सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी यवतमाल से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया, आप सभी डबवाली से जुड़ चुके हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न, वकील वाल्मीकि, निनाजी, स्वप्निल, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बुलडाणा महाराष्ट्र से वासुदेव, अनीता, रमेश राव कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, साथियों आप हमसे जुड़े रहते हैं, अपने संदेश हम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। श्रीराम, गोंदली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम, युवराज, आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ एक और संदेश लिख भेजा है महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश और पूरा लोखंडे परिवार मिलकर हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। साथियों बताते भी जाइएगा कि कार्यक्रम में कौन सा गीत, कौन सा कार्यक्रम क्या पसंद आ रहा है आपको। छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा, पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला संदेश लिख भेजा है पंजाब से लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनके पोत्रे गुरशबद ने। आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े जवाहर नगर दुर्ग से जुड़ चुके हैं।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में अगला संदेश आ चुका है अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश, अदिरा और राजवी समस्त परिवार के साथ। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और इनके साथ डुगू भाविक। श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, शुभ नारायण एंड भूलिया गुप्ता, संगीता पासवान, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, आप सभी राजनगर बिहार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। हैदराबाद वनस्थलीपुरम से दौरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका, बद्री, हरणी, लोकेश, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अगला संदेश लिख भेजा है हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह, सभी साथियों का स्वागत। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो एंड विलिस, आप सभी सहारनपुर से हमसे जुड़े हैं। आदर्श नगर मालोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा एंड निवान। अगला संदेश हमसे जुड़ा है बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, इसी के साथ रामगढ़ कैंट से जुड़े हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। समस्तीपुर बिहार से काली राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। फजिल का पंजाब, क्रियांश भगाड़िया, योगेश भगाड़िया और ओम, बेबी गरिमा, रजत, मनीष, डी अशोक कुमार, अबिका, जीविका, सानो एंड अर्चना, आप सभी श्रीरामपुर से कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। इसी के साथ अगला संदेश लिख भेजा है श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष।

पैरादा नजर मिल गई तो वाह। गीत तो आपने बहुत अच्छा पसंद किया है फिल्म सनम बेवफा से, पसंद लिख भेजी है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश प्रमिला वांछ, और जरूर आपकी पसंद को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अररिया बिहार से मोहम्मद अफजल, फैजल इमाम, मोहम्मद अकमल, नफीसा एंड जोहानुल।

मेरठ से दिग्दर्शन और कविता, इतनी लंबी लिस्ट आपने लिख भेजी है, साथ में सिर्फ अपने नाम भी लिख भेज सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सीताराम कांगड़ा, बबीता कोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा।

गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत स्वागत। जी हाँ साथियों, अगला संदेश पंजाब से आया है। बिल्कुल, पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति और संजीव बंटी, पूरा ही खुश दिल परिवार, स्वागत खुशी खुशी आपका। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, इसके साथ बिहार से है डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीवा। भोपाल और राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान पूरा एंड पूजा परिहार, आप सभी का स्वागत। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखुर एंड कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र, आप सभी नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। करीमनगर से हैं लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय एंड साईकरण। गंजरनवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद, फातिमा गाजी और मुन्ने सलमानी शेख एम कलीम। नरविल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तैड़े, आशीष मोहरकर। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती, आप सभी छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम सुन रहे हैं। बलिया से हैं ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार। जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय एंड प्रांजल। कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगला संदेश कुरावली से है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी एंड आसना मोहम्मद कैफ अंसारी। बिहार से जुड़ चुके हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण एंड जोहानुल। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता, आप सभी का धन्यवाद। प्रकाश जैन, आप सभी नांदेड़ से हैं। लातूर से संगीता, सूरज, गांधी चौक पंजाब से हरदेव, मिक्का, बलविंदर वर्क, जयतेव वर्क एंड मिक्का वर्क। ग्राम जखड़ गांव अहमदनगर से मोहब्बत नजीर हुसैन पटेल, अमिता पटेल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बिंगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा, रजाक मोहम्मद, समीम बिगम, इमरान खान, इरफान खान, अभी आप सब राजस्थान से जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से हैं रोहन एंड आर्य, मुराहू, देवंती। चंदौली से हैं विजय, सरोज, सुंदर और सुमन। महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री मैत्रे, अंजलि, बाला साहब, रामनिवास, धनंजय और पीबी कुल थे। हरियाणा से जुड़ चुके हैं सतवीर सिंह, बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जुन, नव्या। हकीकत पुरामऊ से मुन्ना भाई सोनकर, पिंकी, आर्यन, कृष्ण और पीहू। महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार, अमोल, शोभाताई, दीपाली,

संदेश पहुंच चुका है राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशवरी धान खुराना, तुलसी मस्किन, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से आप जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, आप दिल्ली से कार्यक्रम सुन रहे हैं। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकल और

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, आपके लिए विशेष सूचना है किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 9/6/2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। किसान भाई, पशुपालक भाई गर्मियों में अपने पशुओं की उचित देखभाल जैसे उनका आहार, आवास व्यवस्था एवं लू से बचाव तथा बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी है तो हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार से। कार्यक्रम का समय रहेगा मंगलवार यानी आज संध्या 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं बिजेंद्र कुमार जादौन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह जादौन के गाए लोक गीतों का।

0: 돼요.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में, ब्रजेंद्र सिंह जादौन के गाये लोक गीतों का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हरि नाम बज गोनी होई सो होय। हा चंद्र सखी बज बाल कृष्ण

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजेंद्र सिंह यादवन के गाए गीत। इसी के साथ ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा

0: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। इसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरोद वादन राग पुरिया धनाश्री में। समय रहेगा रात्रि 10:30। संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। आज का विषय लेकर आएंगे गर्मी में पशुओं की उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुज कुमार।

बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 से। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा वार्ता, विषय रहेगा ब्रज में अधिक मास का महत्व और परंपरा। वार्ताकार होंगी सुषमा सारस्वत।

अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे बिरसा मुंडा शहीद दिवस, प्रधानमंत्री मुद्रा

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे ब्रज लोक कथा। शीर्षक एहसान, कथाकार नरसीलाल सागर। रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।

संध्या वंदन ये कार्यक्रम संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर।

0: मनी टॉक 9:30 पर, मंथन रात्रि 9:45 से। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप स्वयं को बचा के रखिए। अपने आप को स्वस्थ रखेंगी तभी आप औरों का भी ख्याल रख पाएंगी। बहनों जब कभी हम सोचते हैं कि एक समय था कि कई बार अपने जज्बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम संदेशों का, शब्दों का उपयोग करते थे और उसके लिए कागज एक माध्यम था।

0: जिनसे हम अपनों की खुशबू और अपनापन झलकता था। और जब हम बचपन में छोटे थे तो आपने देखा होगा कि कई बार हम चिट्ठियों का इंतजार करते थे, डाकिये का रास्ता देखते थे और फोन भी बहुत कम हुआ करते थे। कई बार हम अपनों से बात करने के लिए एसटीडी पर जाते थे और लाइन में लगना होता था कि हमारा नंबर आए और हम अपने अपनों से बात करें। लेकिन बहनों, आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज सोशल मीडिया ने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया है। सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित किया है और इसके सकारात्मक उपयोग से दूरियां मिटी हैं। ज्ञान और सूचना का प्रसार तेजी से हुआ है और लोगों को अपने विचारों को साझा करने के लिए एक सशक्त वैश्विक मंच मिला है। सोशल मीडिया के हम पहलू देखें तो सकारात्मक प्रभाव बहुत सारे हैं, जैसे कि बेहतर संचार और प्रभाव। वैश्विक संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए आप भौगोलिक बाधाओं को पार करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आसानी से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यूं कहें कि हम अब तो फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे का चेहरा देखकर बात कर सकते हैं। इसके द्वारा हम नए मित्र बना सकते हैं। समान रुचियों वाले लोगों को खोजना और नए दोस्त बनाना अब बहुत ही आसान और सरल हो गया है। सूचना और शिक्षा की बात करें तो दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें रियल टाइम पर अर्थात वास्तविक समय पर ही प्राप्त हो जाती है। शैक्षिक संसाधन की बात करें तो ट्यूटोरियल और चर्चाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी और ज्ञान हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मनु व्यवसाय की देखें तो हम छोटे व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया वरदान साबित हुआ है। इसके माध्यम से कम लागत में अपने अधिक उत्पाद और सेवाओं को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। नेटवर्किंग जैसे प्लेटफॉर्म पेशेवरों को नौकरी खोजने में और नेटवर्क बढ़ाने में मदद करते हैं। सामाजिक समर्थन की बात करें और जागरूकता की बात करें तो सामाजिक कल्याण और बदलाव के लिए लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा आसानी से लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी खास बात ये बहनों, कई बार हमारे अंदर प्रतिभाएं होती हैं जिनका प्रदर्शन हम नहीं कर पाते हैं, तो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शन करने के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन, कला, संगीत, लेखन या अन्य रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने और एक बड़ी संख्या में दर्शक को पाने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है। कला बहनों कोई भी हो सकती है, चाहे कला आपके हाथ की हो, चाहे कला आपके संगीत की हो। और बहनों जब बात संगीत की चली है, बात सोशल मीडिया की चली है, तो लीजिए आप सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच।

0: mobile number. What is your smile number?
1: What is your style number? Karun kya dial number?
2: It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.
3: मैनू इस समय आप देख रहे हो कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी पूरे चरम पर है, लेकिन फिर भी इस गर्मी के मौसम में भक्तों की जो आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, भक्तों की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ब्रज में अधिक मास का माह चल रहा है और अधिक मास में लोग परिक्रमा लगाते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। ऐसे में गर्मी की परवाह किए बगैर लोग दिन के समय भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ब्रज में परिक्रमा लगा रहे हैं। ब्रज में चाहे मथुरा की परिक्रमा हो, चाहे गोवर्धन की परिक्रमा हो, चाहे वृंदावन की पदगम हो, भक्तों की श्रद्धा भक्ति में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि दिन ब दिन भक्तों की श्रद्धा भक्ति बढ़ती ही जा रही है। तो बहनों, जब बात अधिक मास की है तो इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे सुनते हैं ये वार्ता, ब्रज में अधिक मास का महत्व एवं परंपरा। वार्ताकार हैं सुषमा सारस्वत।
4: हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक माह कोई ना कोई त्योहार, पर्व, उल्लास और उत्सव मनाने की परंपरा है। तो आज हम जिस माह की बात कर रहे हैं वो अधिक मास है। अधिक मास की कथानुसार सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं होने के कारण इसे मल मास कह कर के इसकी बड़ी निंदा होने लगी, जिससे अधिक मास को बड़ा दुख हुआ। इस बात से दुखी मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उसने सारी बातें भगवान को बताईं। श्री हरि मल मास को गोलोक लेकर के गए, जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास की बातें सुनी तो उन्हें भी दुख हुआ और उन्होंने उसे वरदान दिया कि आज से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। जैसे मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, वैसे ही तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। कहते हैं कि तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास बन गया। पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल में आता है। इस मास में जप, तप, दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में श्री कृष्ण श्री भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान की उपासना बेहद फलदायी मानी जाती है। इस महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में सभी मांगलिक कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है

कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस माह में किया गया दान, तप, पूजन, उपवास, हवन कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, उसका भी बहुत फल मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह मलिन हो जाता है, इसलिए इसे मलमास भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार हर 32 महीने में आने वाले अतिरिक्त महीने को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। खगोलीय रूप से यह सूर्य और चंद्रमा के बीच के अंतर को संतुलित करने की अद्भुत व्यवस्था है, जो ऋतुओं और त्योहारों का तालमेल रखती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस मास का अत्यंत गहरा महत्व है। इस महीने को भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसे स्वयं अपना नाम दिया था। शास्त्रों के अनुसार इस समय गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और विशेषकर 33 मालपुओं की दान करने की परंपरा है, क्योंकि किए हुए दान का फल अक्षय हो जाता है। इस महीने में कोई सूर्य संक्रांति न होने के कारण इसे मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए इस समय का उपयोग पूरी तरह से आत्मचिंतन, निष्काम भक्ति और भगवत आराधना के लिए किया जाता है। इसे दामोदर मास या पुरुषोत्तम मास नाम भी भगवान श्री हरि विष्णु ने ही दिया है। शायद एक कारण यह भी रहा होगा कि इस मास सभी शुभ मांगलिक कार्य जब वर्जित हो गए, तो विवाह नहीं होंगे, नए कारोबार नहीं करेंगे, गृह प्रवेश भी निषेध है, तो अब मानव कुछ समय के लिए अपनी भागम भाग वाली जिंदगी में थोड़ा ठहराव महसूस करे, थोड़ी आपाधापी से राहत मिले और कहीं ना कहीं भौतिक संसार से निकलकर शांति का आनंद प्राप्त करे। इसलिए इस माह में व्यक्ति अपना आत्मोत्सर्ग कर सके, आध्यात्मिक सोच, विचार और भाव से जुड़ सके। ऐसा करने के लिए कोई यह न कह सके हमारे पास पूजा पाठ, जप तप का समय ही नहीं रहता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए समय कहाँ से लाएं। तो यह भी एक कारण रहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण खगोलीय चक्र का वैज्ञानिक चिंतन कर प्रति तीसरे वर्ष का पूरा महीना ही तय कर दिया कि अब हमें कोई दूसरे कार्य त्याग कर मात्र आराधना, उपासना कर आत्मिक उत्थान हेतु ही कार्य करने हैं। पूरे महीने में जितना संभव हो, जितना सामर्थ्य हो, दान का विधान बताया गया है। हमारे ब्रज में भी अधिक मास को बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ब्रज में अनेकों प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं, मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों से लोग बहुत भक्ति भाव से ब्रज में आते हैं और ठाकुर जी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रज में अधिक मास में परिक्रमा का बहुत फलदायी लाभ मिलता है। बहुत लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, तो अनेकों भक्त गिरि गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय भगवान के भजन, कीर्तन और नाम का जाप निरंतर करते रहते हैं। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, भक्तों की मंडली अनवरत नंगे पैर चलकर परिक्रमा करते हैं। अधिक मास में जो दान करने की परंपरा बनाई गई है, उसमें 33 की संख्या का भी विधान है। गृहस्थ में उपयोग आने वाली चीजें जैसे वस्त्र, छाता, जूते, बिस्तर, बर्तन और अन्न, जल, फल में खरबूज, तरबूज, आम, केला और सत्तू का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी लोग अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। दान में 33 प्रकार की वस्तुएं जैसे 33 दीपदान अवश्य करें। 33 मालपुआ बनाकर भगवान को अर्पण करने के पश्चात किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करने की व्यवस्था हमारे ब्रज में की जाती है। 1 लाख या 1.25 लाख बत्ती का दीपक जो जलाने का प्रावधान किया गया है ब्रज में, वह भी यहाँ की एक अनूठी परंपरा मानी गई है। स्थान स्थान पर ठंडा मीठा जल का वितरण भी किया जाता है। जलदान महादान कहा जाता है। भूखे व्यक्ति

को यदि भोजन खिलाया जाए तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रज में जगह जगह पर भंडारे और भोजन वितरण की व्यवस्था की जाती है। भागवत का पाठ और कथा भी बहुत जगह किया जाता है। कहीं कहीं अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन भक्तिमय हो जाता है। बिहारी जी के फूल बंगला के दर्शन, राधा रमन जी की छवि के दर्शन, गोवर्धन महाराज की दूध की धार की परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा जैसे अनेकों परमार्थ कार्य हेतु भक्त ब्रज रज में विचरण करते हैं। चाहे नौतपा हो या भयंकर ज्येष्ठ मास का ताप हो, श्रद्धालुओं में अधिक से अधिक मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता है और उनको अधिक उत्साह बना रहता है। वे सभी भगवत भक्ति के रस में डूबकर निरंतर अधिक मास का फल प्राप्त करने हेतु इस प्रकार जप करते हैं, ओम नमो पुरुषोत्तमाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। इस प्रकार निरंतर जप और नाम कीर्तन करते हैं और ब्रज की रजभूमि को, तपोभूमि को अपना श्रद्धान्वत नमन करते हैं। हम सभी को यह ज्ञात है कि यह पृथ्वी जो है उसका दूसरा नाम मृत्यु लोक है, जहाँ से सभी को यह धराधाम छोड़कर जाना है। उस मुक्ति को प्राप्त करने हेतु मोक्ष की चाह रखते हुए प्रत्येक जीव यदि सत्कर्म करे तो भगवत धाम की रास्ता आसान हो जाता है। आगे का मार्ग सरल व सुगम रहे इसलिए हरि नाम की उपासना निरंतर रहे, दान जप करते रहे, तो ब्रजवासी इन पंक्तियों के साथ में अपना भाव प्रकट करते हैं।

0: की। इस प्रकार अधिक मास की पूर्ण अवधि में अपने उद्धार हेतु हम सभी अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सफल बनाने हेतु सत्कर्म करते हैं।
1: अभी बहनें सुन रही थीं ये वार्ता ब्रज में अधिक मास का महत्व एवं परंपरा। वार्ताकार थीं सुषमा सारस्वत। यह बहनों इस माह में अधिक मास में दान करना चाहिए। दान के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान का भी अत्यधिक महत्व है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो दीप प्रज्वलित करने से भी हमें पुण्य प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें दान के साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।

0: कभी आपने गौर किया है कि आजकल एक चीज कॉमन है और वो क्या है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो,
1: कोई भी, और वो चीज कॉमन है तनाव। आज हर कोई तनाव से ग्रसित है और सभी ये सोचते हैं कि हम अपने तनाव को कैसे करें, दूर करें। तो कई बार बच्चों को तनाव होता है अपनी पढ़ाई लिखाई का, युवाओं को तनाव होता है अपने जॉब का, आगे अपने कैरियर का, बल्कि जो हम बहनें हैं, चाहे कामकाजी हों चाहे घरेलू हों, सभी को तनाव रहता है अपने परिवार का और परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का। जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सबसे ज़्यादा हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं, खास तौर पे हमारी बढ़ती हुई उम्र में। बढ़ती उम्र में एक वजह तनाव की ये भी है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वह असंतुलन होते हैं, जिसकी वजह से भी हमें तनाव हो जाता है। हमारा स्वास्थ्य और व्यवहार इस तनाव की वजह से दोनों ही प्रभावित होते हैं। तनाव को कम करने के लिए, बेहतर जीवन शैली के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या में योग को शामिल करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अर्थात दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने के साथ साथ आप वॉक भी कर सकती हैं। योग महिलाओं के लिए बढ़ती उम्र में के लक्षणों को धीमा करके हार्मोन्स संतुलन बनाए रखने और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह शारीरिक लचीलापन बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और तनाव को कम करता है। यह यूं कहें संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधार करता है। इसमें कई योग हैं, जैसे ताड़ासन है। ताड़ासन से शरीर के पोषण को सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। मेनु योग में भुजंगासन, भुजंगासन से छाती, कंधे और पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और हार्मोन संतुलन में मदद करता है। सेतु बंधासन पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है और मेनोपोज के दौरान राहत देता है। उत्तनासन चेहरे पर रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे त्वचा में चमक आती है। मेनु मेनोपोज और मासिक धर्म के दौरान होने वाली सभी समस्याओं को नियंत्रित करने में योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे बड़ी खास बात ये कि मानसिक तनाव को कम करने

के लिए हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और ध्यान जैसे योग को शामिल कर सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति तो मिलती है और बढ़ती उम्र में याददाश्त व संज्ञानात्मक गिरावट भी कम होती है। तो मैंने इस प्रकार योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम सभी बहनें आज ये प्रण लें कि हम सभी बहनों को कुछ न कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना है। मैंने ये जो हम समय अपने लिए निकालेंगे वही हमारा अपना है। तो मैंने घड़ी की सुई भी संकेत कर रही है कि हम आपसे अनुमति लें। तो वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2000

0: 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छह स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना

और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है।

0: 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा

0: अब तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है सीआईईटी व एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचार

0: चलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ।

बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: आए, आए।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी पापड़ अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना।

0: हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, बिरसा मुंडा शहीद दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है, जो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक धरती के आबा बिरसा मुंडा के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड बिहार में ब्रिटिश नीतियों और स्थानीय जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ मुंडा विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया और 9 जून 1900 को महज 25 वर्ष की उम्र में रांची की जेल में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उल गुलान क्रांति का बिगुल फूंका था। उन्होंने अपने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का संदेश दिया। उन्हें प्यार से धरती आबा यानी धरती का पिता भी कहा जाता है। उनके सम्मान में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस पर उनके संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं।

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, बिरसा मुंडा, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। वार्ताकार हैं माधुरी अग्रवाल।
1: आदिवासियों के इतिहास में बिरसा मुंडा का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। इनका जन्म 1875 में हुआ था। इनका नाम मुंडा जनजाति के नाम पर मुंडा रखा गया। बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम सुगाना मुंडा तथा माता का नाम कर्मी हातू था। बिरसा का परिवार पहले उल्हात में रहता था, पर वहाँ कोई रोजगार ना होने के कारण वो लोग कुरम्बदा चले गए। वहाँ उन्होंने फसलों की साझेदारी की, पर बाद में उनसे झगड़ा होने पर वे चाकड़ आ गए। बिरसा ने अपने बचपन के दिन चाकड़ में गुजारे। मुंडा का बचपन जंगलों में भेड़ चराते हुए गुजरा। वे अपने दोस्तों के साथ धूल मिट्टी में खेलते थे। बड़ा होने पर वही बिरसा एक सुंदर नौजवान बना। वह जंगल में बांसुरी बजाता था। जब वह बांसुरी बजाता था तो कहते हैं सभी पशु पक्षी उसे सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। गरीबी मुंडा को आयु भट्ट ले आई, जो उसके चाचा का गांव था। बिरसा वहां 2 साल रहा। वह सालगा में पढ़ने के लिए जाता था। बिरसा वहां धर्म प्रचारकों के संपर्क में आया, जो मुंडा जनजाति के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में बदलते थे। उसने पाया कि भूमि स्वामी द्वारा जनजातीय लोगों को पीटा जाता था तथा ज्यादा काम कराया जाता था। उसने गांव छोड़ दिया तथा अपने भाई के पास कुंडी बार टोली चला गया। वहां उन्होंने लोअर प्राइमरी एग्जाम पास किया। बिरसा ने गोसनर इवेंजिकल लूथेरियन मिशन स्कूल, जो जर्मन मिशनरीज द्वारा चलाया जाता था, से शिक्षा प्राप्त की। यही वह स्कूल था जहां से उनके स्वतंत्रता सेनानी बनने की शुरुआत हुई। उन्होंने सर्वप्रथम आदिवासियों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई। एक बार स्कूल के फादर बच्चों को स्वर्ग के राजा के बारे में बता रहे थे, तो बिरसा ने पूछा, कहाँ थे आपके स्वर्ग के राजा जब आदिवासियों से उनकी भूमि छीनकर उनको उन्हीं की जमीन पर मजदूर बना दिया था। बिरसा वहां 1886 से 1890 तक रहे। इस दौरान धीरे धीरे बिरसा का अपना धर्म क्रिश्चियन धर्म हो गया। उस समय में जर्मन एवं रोमन कैथोलिक चर्च के लोगों का बाहुल्य था। चिवासा सरदारों की गतिविधियों के सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था। बिरसा के पिता बिरसा को मिशनरीज तथा ब्रिटिश सरकार के विरोध में देखना चाहते थे। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने जर्मन मिशन की सदस्यता छोड़ दी तथा सरदारों के आंदोलन के साथ खड़े हो गए। 1 अक्टूबर 1894 में बिरसा ने अपनी भाषा में नारा दिया, महारानी राज टुंडू जाना ओरो अबुआ राज इते जाना, जिसका मतलब है आदिवासियों के लिए ब्रिटिश राज को हटाओ और अपने पुराने रीति रिवाज को लाओ। बिरसा ने छोटा नागपुर में आदिवासी आंदोलन चलाया। उनकी देशभक्ति जंगल में आग की तरह फैली। उन्होंने संगठनात्मक कौशल, देशभक्ति की भावना, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता से उन्होंने आदिवासियों को ठेकेदार, जमींदार तथा सूदखोरों से मुक्ति दिलाई तथा उन्हें अपनी जमीन वापस दिलाई। उसके बाद पार्लियामेंट तथा राज्य सरकार ने कई कानून बनाए जो आदिवासियों को बहुसंख्यकों के चंगुल से बचाए। बिरसा का सपना था कि आदिवासियों को दोबारा बसाया जाए तथा एक निश्चित समय में उनकी भूमि वापस दिलाई जाए। उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी तथा सरकार के प्लान जैसे ट्राइबल सब प्लान्स, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच को लागू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आदिवासियों को हमेशा विकास करना चाहिए तथा उनकी जनजातियों के ऊपर कोई भी नियम या कानून जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए।

0: हमें हर जगह उनके रीति रिवाज तथा संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। बिरसा मुंडा के प्रभाव के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं। जनवरी 1900 डोमावाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे, जहां बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा मुंडा की क्रांति ने आदिवासियों को बचाया तथा लोगों को जगाते जगाते आखिर में 9 जून 1900 को रांची कारागार में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बिरसा मुंडा ने अपने 25 वर्ष के छोटे से जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पा लिया। उस इलाके के लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारते तथा पूजते थे। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं।
1: अभी साथियों, आपने सुनी वार्ता बिरसा मुंडा, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। वार्ताकार थी माधुरी अग्रवाल। और साथियों, कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का

और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवा वाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ही मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं।
1: ऑनलाइन की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं मार्केट के अंदर, इसलिए हमने ऑनलाइन का बारे में सोचा। दूसरा, ऑनलाइन अगर हम ना जुड़े तो हम केवल अपने एक लिमिटेड शहरों में ही उसको व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से हम पूरे देश के अंदर और पूरे
0: बारे में
2: का एक सिलसिला लगा अपने मानव अधिकारों
0: पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशा गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और नीलमणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा गर्मी में पशुओं की उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुज कुमार। श्रोताओ, यदि आप भी इस कार्यक्रम में गर्मियों में पशु की उचित देखभाल के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 से लेकर 6:45।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर, इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा एहसान। कथाकार होंगे नरसी लाल सागर।

शाम 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:35 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने होगा रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सरोद वादन। आज आप सुनेंगे राग पूरी धनाश्री। वादा कलाकार होंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां साहेब। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। और श्रोताओं, अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में निम्न जनपदों के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज आंधी तूफान यानी हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर घंटा जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा पहुंच सकती है। इसके साथ साथ बिजली कड़कने, मध्यम बारिश और ओले गिरने की बहुत ज्यादा संभावना के रेड अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। जिन जनपदों के नाम शामिल हैं वे हैं आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस और मथुरा। इसलिए सभी से अपील की जाती है कि अगले 3 घंटों में वे सावधानी बरतें और एहतियात के साथ ही घर के बाहर निकलें।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुन में बारे सभी भैया बहन वीरेंद्र सिंह और
7: नीलमणि बहन की
6: राम राम।
7: वीरेंद्र भैया देखो गर्मी खूब पड़ रही है और ऐसे में अपने आप को भी बचाना है। अगर हमने पशु पाल रखे हैं तो अपने पशु उनको भी ध्यान रखना है।
6: बिल्कुल।
7: तो जैसे कि हम जाने हैं पशु बेचारे मुंह खुले हैं।
6: हाँ।
7: अपनी जो व्यथा है, अपनी समस्या है, अपनी जो परेशानी है अब वो कहीं से कहना सके हैं।
6: बिल्कुल।
7: और गर्मी को मौसम शुरू होते ही पशुपालक जो हैं भैया उनकी चिंताओं बढ़ जाए हैं।
6: और
7: विशेष रूप से गर्भित और जो दुग्ध उत्पादन करने वाले मादा पशु हैं इनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत हो गई है। तो ऐसे में हमारे पशुपालक भैया बहनन के लिए जो है अपने जो विशेषज्ञ आमे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी दे में हैं और मादा पशु हमारे पशुपालन की आधारशिला है ये भी मालूम है अपने
6: बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर, जरूर।
7: चौके बिनते दूध उत्पादन ले में प्रजनन पशुपालन की वृद्धि जो जुड़ी हो गए बदलते मौसम विशेषकर गर्मी के दिनान में है ना। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातन को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है हमारा जो विषय है गर्मी में पशुओं के उचित देखभाल पे जो है फोन के माध्यम से भैयान को समाधान है पाएगा जो उनकी पशुओं की जो समस्या है।
6: हाँ।
7: तो भैयान को मालूम ही है कि 2530 हमारा फोन नंबर है और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगा ले मैं
6: 2530135।
7: हाँ 2530135 है ना। और गर्मी में पशु उनकी उचित देखभाल पर आधारित है हमारा आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम। तो वीरेंद्र भैया देखो पहला क्वेश्चन हम प्रश्न जो है पूछ ले अपने डॉक्टर साहब से।
6: हाँ,
7: डॉक्टर साहब अपनो कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: डॉक्टर साहब राम राम साहब।
7: सबन को राम राम भैया। तो भैया डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि गर्मी के मौसम में मादा पशु को जो सबसे ज्यादा कौन कौन सी समस्या हुए हैं और इनसे बचाव के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए।
6: बिल्कुल
8: जी, देखिए जैसे इस समय तापमान चल रहा है वातावरण में दिन में 44-45 तक का भी तापमान हो रहा है और जैसे हम लोगों को गर्मी से समस्या होती है मनुष्य को लगभग उसी प्रकार से अत्यधिक तापमान जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होता है।
6: बिल्कुल है जी।
8: जहाँ तक दूध देने वाले पशु की बात करते हैं गाय और भैंस अगर तापमान बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी मेटाबॉलिक जो दर है वो बढ़ जाती है।
6: हाँ।
8: और खाना कम कर देता, आपने भी देखा होगा जैसे हमारा अत्यधिक गर्मी में खाना कम खाया जाता है लिक्विड डाइट जो होता है पानी ज्यादा लेते हैं।
6: बिल्कुल।
8: तो इस मौसम में दूध का भी उत्पादन कम हो जाता है गाय भैंसों में

0: और दूसरा, अगर प्रजनन संबंधी बात करें, अत्यधिक गर्मी होने से खासकर भैंसों में देखा है कि जो गर्मी के लक्षण बिल्कुल ना के बराबर, जैसे इस मौसम में देखते हैं कि गर्मी में भैंसें अभी नहीं आती हैं,
1: बिल्कुल
0: जबकि वास्तव में ऐसा है, अगर हम गर्मी का प्रबंधन कर लें ठीक से तो भैंसें भी पूरे 12 महीने गर्मी में आती हैं, गाभिन हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता, हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं उसका प्रबंधन। गर्मी से बचाने के लिए जैसे हम लोग पंखे का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से जानवरों के लिए भी किया जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: और जहाँ तक इनके जो जो जानवरों के घर हैं, जो जिसमें हम रखते हैं पशुओं को, जो
1: हाँ, पशु बाड़ा
0: पशु
1: चाहे
0: बाड़ा है,
1: वह झोंपड़ी कह ले
0: उसमें
1: हो।
0: उसमें इस मुख्यतः जो वेंटिलेशन, खिड़की की जरूर व्यवस्था हो जिससे हवा का आदान प्रदान होता रहे,
1: बिल्कुल
0: और छत की जो ऊंचाई है, कई बार ऐसा देखा गांव में नीची छत रहती है और टीन की शेड उसमें डाल देते हैं, बहुत
1: हाँ
0: ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसकी हाइट भी लगभग 11-12 फीट जो है ऊंची आनी चाहिए।
1: हाँ डॉक्टर साहब, एक हमारे भैया लाइन पे, पहले उन्हें ले लें।
0: जी
1: हेलो किसान वाणी, राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? शुभ नाम बताओ अपनों। हाँ, तो पशुन से संबंधित कहाँ जानना चाह रहे हो? पशुन की उचित देखभाल कैसे करें? डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको उचित सलाह और जानकारी देंगे।
2: ये जानना है, गर्मियों में बुखार वगैरह आ जाता है तो उसका क्या समाधान हो सकता है?
1: गर्मियों में कहा जाए पशु ने,
2: बुखार वगैरह आ जाता है।
1: अच्छा बुखार आ जाए।
2: जी
1: हाँ बिल्कुल, सुनो ध्यान से, डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
0: देखिए, बुखार ज़्यादातर गर्मी अत्यधिक से भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर बुखार का कारण कुछ ना कुछ इन्फेक्शन संक्रमण रहता है। जैसे हम लोगों को भी बुखार आता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और अगर बुखार है बाकी ऐसे कोई दूसरे लक्षण नहीं है तो जो पैरासीटामोल का इंजेक्शन हम टेबलेट लेते हैं, वही इंजेक्शन मार्केट में पशुओं के लिए आता है, पैरासीटामोल नाम से, जो मेलोनेक्स आता है, मेलोक्सिकैम आता है, कई सारी कंपनी के आते हैं, वो 10-10 15 15 ml डेली जो है 2-3 दिन लगा सकते हैं। इसके बड़े बोलस भी आते हैं, पैरासीटामोल के बोलस भी आ सकते हैं,
1: जी
0: वो भी हम पशु को दे सकते हैं। और अधिक तापमान होने पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पशु का सिर है, सिर पे ताज़ा पानी थोड़ा ठंडा वो डाल सकते हैं, पूरे शरीर पे नहीं डालना है। जैसे हम लोग भी देखा ना, आदमियों में भी माथे पे पट्टी रखते हैं,
1: हाँ
0: तो क्या है, जो जो तापमान का रेगुलेशन है वो हमारे दिमाग के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस एक जगह है जो बहुत छोटी हमारे ब्रेन में, दिमाग में होती है,
1: जी जी
0: तो वहाँ से तापमान रेगुलेशन होता है। अगर हम सिर पे पानी डालते हैं पशु का अधिक टेम्परेचर, उसको उसको बहुत रिलीफ मिलता है। पूरे शरीर पे नहीं डालना है, कभी भी बुखार में पशु को नहीं नहलाना है, नहीं तो गर्म सर्द एक समस्या जानते हैं हमारे किसान
1: हाँ,
0: भाई,
1: सर्द
0: उस
1: गर्म है जाए
0: सर्द
1: उसको।
0: गर्म होने की संभावना रहती है, तो सिर पे पानी डालें और पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगवाएं।
1: बिल्कुल
0: इंजेक्शन नहीं लगा पाए तो उसकी गोली, बोलस हम बोलते हैं पशुओं के केस में, वो बड़े साइज के होते हैं, दो दो गोली वो सुबह शाम पशु को बुखार के हिसाब से दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमारे एक कोई नए किसान है, ये जानकारी चाह रहे, तो
0: जी
1: आप वाते पूर्व वजह बता रहे कि पशुओं को जो
0: हाँ,
1: बाड़ा है वो ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो।
0: हवादार हो, उसमें कूलर की अगर व्यवस्था हमारे किसान भाई कर सकते हैं
1: वो
0: तो
1: तो
0: कर सकते
1: सबसे
0: हैं,
1: बढ़िया है फिर।
0: और पेड़ अगर हो आंगन में जहाँ पशु में रख रहे हैं या खुले में रख रहे हैं, पेड़ से काफ़ी, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पेड़ के जो आसपास का टेम्परेचर छांव में लगभग 3-4 डिग्री वातावरण से
1: कम हो जाता है।
0: कम रहता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो छत का हमें ध्यान रखना है, उसकी ऊंचाई रखनी है। और जहाँ तक बात है अब पशु को नहलाने की, डेली जो है
1: जी
0: आज के मौसम में तो कम से कम 2 बार उसको जरूर नहलाएं ताजे पानी से, और जहाँ तक पीने का पानी है वो हमेशा
1: जी
0: पशुओं को उपलब्ध होना चाहिए।
1: हाँ डॉक्टर साहब, एक भैया लाइन पे। हेलो किसान वाड़ी, हेलो।
2: हेलो
1: हाँ राम राम जी।
2: जी, राम राम जी,
1: हाँ
2: मैं सर आकाश बोल रहा हूँ, गांव मोरे से। सर,
1: अच्छा, बोलो साहब, कहाँ जानना चाह रहे हो? पशु से संबंधित कोई समस्या हो तो।
2: हमारी एक भैंस है, वो कम से कम 4-5 दिन से चारा ना खा रही।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब
0: वो
1: पूछना चाह रहे हैं।
0: भैंस है, गाभिन है कि दूध दे रही है, अभी क्या स्थिति है?
2: नहीं, अभी गावन तो नहीं है, पर गावन इतनी नहीं है ज्यादा।
0: दूध दे रही है?
2: हाँ
0: अच्छा, बच्चा कब दिया है?
2: हाँ
0: नहीं, ब्याही कब है, बच्चा कब दिया है उसने, कितने दिन हो गए हैं?
2: 5-6-7 महीने हो गए।
0: 6-7 महीने हो गए। देखिए अगर चारा नहीं खा रही है, ज्यादातर केस में होता क्या ना, जैसे

0: अभी पहले भी एक हमारे जो पशुपालक भाई सवाल पूछ रहे थे, बुखार के केस में कहीं ना कहीं उसको बीमारी जरूर है, खासकर बुखार में हम लोगों का भी चारा खाना कम हो जाता है, तो बुखार आप नपवाएं उसका। लगभग जो गाय भैंस है उनका 101 तापमान होता है, हमसे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको नपवा लें आप। अगर बुखार है तो उसको पैरासीटामोल या एक कोई एंटीबायोटिक की दवाई, दो इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं 2-3 दिन में। उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो खून जांच, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, कि 3-4 दिन तक अगर बुखार नहीं उतरता है तो हमारे केस में भी हम डॉक्टर एडवाइज़ करता है, हमें सलाह देता है कि आप खून जांच कराएं।
1: बिल्कुल
0: उसकी आप यहाँ पे भी अपने हमारे विश्वविद्यालय में भी खून जांच करा सकते हैं, उसके हिसाब से उसका आगे इलाज आपको बताया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बड़े जागरूक किसान हैं। एक और भैया लाइन पे हैं,

0: जागरूक किसान है। एक और भैया लाइन पे हैं। हेलो किसान वाणी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, शुभ नाम बताओ।
1: जी मैं नरेश बोल रहा हूँ, ग्राम बाहुगढ़ सकरा से।
0: अच्छा, हाँ तो कहाँ आज जानना चाह रहे हो?
1: हम सर जी यह जानना चाह रहे हैं कि गर्मी को सीजन है, साफ गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: हाँ
1: और ऐसे ये पशु जो हमारी बढ़िया है, भैंसे जो एक एक महीना ही ज्यादा रहेगी ना, ये इनकी कैसे पता पड़ेगी हीट में?
0: हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब
2: गर्मी,
0: बता रहे हैं।
2: अच्छा आप कह रहे हैं, देखिए गर्मी इस मौसम में आप पूछना चाह रहे हैं कि गर्मी के लक्षण आए कि नहीं, कैसे पता लगेगा, यही सवाल है ना आपका?
0: बिल्कुल यही है सर।
2: तो ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। देखिए भैंसों में इस मौसम में गर्मी के बहुत ही अच्छे लक्षण नहीं आते हैं, इसलिए पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है हमें।
0: बिल्कुल।
2: इसमें एक लक्षण प्रमुख है जो जीरी डालता है पशु, क्योंकि गर्मी के प्रभाव से जो गर्मी के लक्षण है वो दब जाते हैं, एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं, उनको पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए इस समय भैंसों में गर्भाधान का समय भी जो है मान के चलते हैं कि इस समय गर्मी में नहीं आएगी। गाय की जहाँ तक बात है, गाय की थोड़ी इतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए भैंस में जो उसकी त्वचा है, स्किन है, चमड़ी है, वो भी काले रंग की होती है। और काला रंग ऐसा है कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब, जैसे हम कहते हैं ना गर्मी के समय हमें भी काला कपड़ा पहनते हैं तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो,
0: बिल्कुल।
2: तो गर्मी उसमें ज़्यादा रहती है। अगर उसका हम मैनेजमेंट कर लें, प्रबंधन, जैसे कि फवारे, स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं ना, पानी, अच्छे जो फार्म है वहाँ पे ऐसा प्रबंध किया जाता है, और ताज़ा पानी 24 घंटे भैंस के लिए या गाय के लिए उपलब्ध होना चाहिए। पानी के लिए कोई मात्रा नहीं लिखते हम कि 24 घंटे में कितना पानी पीना
0: हाँ
2: है,
0: जितना वो पी ली।
2: जितना वो पी सकती है 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। नांद में उसके साइड में
0: बिल्कुल
2: नॉर्मल पानी, पानी भी गर्म नहीं होना चाहिए। आप लोग देखते हैं, हम इस समय हम लोग भी
0: ठंडा
2: कोशिश
0: पानी
2: करते हैं
0: पीते
2: कि
0: हैं।
2: थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए, यही पशुओं पर भी लागू होता है। बिल्कुल चारा और दाना, आजकल चूंकि देखिए हरे चारे की भी इस समय समस्या रहती है, इस मौसम
0: हाँ
2: में
0: कम
2: हरा
0: उपलब्ध
2: चारा
0: है।
2: देंगे, अगर पानी का प्रबंधन रखेंगे तो निश्चित रूप से जो गर्मी के लक्षण है वो अच्छे से आएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, और आसान से हमारे पशुपालक भाई उन लक्षण को पहचानेंगे जिससे समय पे उसका गर्भाधान करा सकेंगे। तो ये जो 3-4 महीने, इससे हमारे पशुपालक को नुकसान नहीं होगा। अगर समय से गर्भाधान होगा तो समय से अगले साल उसका बच्चा हमें मिलेगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखो ये किसान हमारे जुड़े भाई हैं, पहले तो ये पूछते रहे हैं अक्सर करके,
2: जी
0: तो बहुत अच्छी बात इन्हें पूछी कि भाई गर्मी के समय पे अब जाड़ने में तो सल पड़ जाए, अब गर्मी में जो पहचान में बहुत कठिन है जाए, तो आपने बताई बहुत अच्छी बात। अब एक बात हम आप अपनी ओर से जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि पशु ने आजकल जो है गलघोंटू और खुरपका और मुंहपका,
2: जी
0: ये ऐसी बीमारी है जाए, तो इनको जो है उपचार कैसे किया जाए, तो या के काज कोई टीका कैसे और कब लगवाया जाए?
2: देखिए ये जो इस समय चल रहा है, एक तरह से मानसून से पहले का मौसम है, और अभी नमी थोड़ी कम है वातावरण में, लेकिन अभी आप देखेंगे 10-15 दिन जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो उसके बाद जो है ये और ज़्यादा नुकसानदायक होगा पशुओं के लिए भी और हमारे के लिए, जिसको हम अधिक तापमान और अधिक नमी वाला मौसम बोलते हैं। तो इससे पहले इस समय दो प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे एक वायरस की है जिसको हम FMD, खुरपका मुंहपका बोलते हैं, और दूसरी HS, गला घोटू, जिसको हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया इंग्लिश में कहते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। इन दोनों ही बीमारी का, देखिए HS बहुत घातक बीमारी है जिसमें जानवर की मृत्यु तक भी हो जाती है और काफ़ी कॉमन है। FMD में जहाँ तक बात है, पशुओं की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन पशुपालक को दुग्ध उत्पादन के रूप में बहुत ही अधिक नुकसान होता है, क्योंकि
0: जी
2: दुग्ध उत्पादन पशु का कम हो जाता है।
0: बिल्कुल प्रभावित हो जाए बात
2: और
0: है।
2: हम जानते हैं कि गाय और भैंस केवल दूध के लिए ही पशु हम रखे जाते हैं, इनको डेयरी एनिमल भी हम कहते हैं, डेयरी पशु हैं,
0: जी
2: तो उस तरीके से आर्थिक हानि बहुत होती है। तो इन दोनों ही बीमारी का टीका बाजार में उपलब्ध है,
0: जी
2: और मानसून से पहले अभी जो मौसम चल रहा है अप्रैल मई जून में, इसका जरूर हमारे पशुपालक भाइयों को इसका टीका लगवाना चाहिए।
0: जी
2: और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री टीका किसान के द्वार पे पशुपालन विभाग द्वारा लगाया जाता है,
0: जी
2: जिसको लगाने से इस बीमारी का खतरा नहीं रहता है।
0: अच्छा एक भैया पूछना चाह रहे हैं कि पहले उन्हें ले। हेलो किसान बाणी।
1: जी
0: राधे राधे जी, राम राम सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं चौधरी महेंद्र सिंह सिहोरा।
0: अच्छा, सिहोरी महेंद्र सिंह जी, पूछना चाह रहे हो, कहाँ पूछना चाह रहे हो, आज पूछो।
1: मैं आदरणीय डॉक्टर को पहले तो प्रणाम करना चाहूंगा। नमस्कार सर।
2: जी जी नमस्कार चौधरी महेंद्र जी बताइए।
0: जी जी

0: मैं जान चाहता हूँ सर, जो टीम आया कर गुरुपकार गले की, जो मुंह पका की
1: जी,
0: वो कब आएगी? इस बार तो नहीं आई, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही भयंकर बीमारी है ये।
1: हाँ, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे दोनों का टीका, इसकी टीम के बारे में चूंकि ये पशुपालन विभाग है तो हमारा विश्वविद्यालय भी उसी विभाग में आता है, लेकिन आप इसके लिए सिहोरा आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है, अस्पताल कौन सा पड़ता है आपका?
0: लोवन है सर।
1: लोवन?
2: हाँ,
1: लोवन में या महावन में जो पशु चिकित्सा अधिकारी बैठता है वहाँ से संपर्क करके आप उसमें टीका लगवा सकते हैं, या आप अगर मथुरा आते हैं तो जो राजीव भवन है वहाँ पे जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ पे भी आप उसका पता करके टाइम से, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है अभी टीका लगवाना फायदेमंद है, क्योंकि देखिए अगर मैंने बताया ना अभी अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी, अगर बीमारी फैल गई तो बीमारी फैलने के समय अगर हम टीका लगवाएं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है,
2: नहीं।
1: उससे पहले अगर टीका लग जाए जिससे पशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए तो उससे बीमारी होने का चांस बहुत कम है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी भाई साहब लाइन पे हैं तो मैं थोड़ा बीच में ये जानना चाहूँगा और भाई साहब वो सुन रहे हैं कि क्या हम जो है या टीका है अगर मान लो उपलब्ध न हो या सरकारी टीम न आवे तो बाजार से लेके खरीद के लगवा सकते
1: हैं? बाजार से भी हम खरीद सकते हैं, ये 50 ml मतलब कई जानवरों का लगभग 2-3 ml लगता है एक जानवर के, लगभग 1 cc में 10-15 जानवर की खुराक आती है, हम खरीद के भी लगवा सकते हैं, 2-3 घर मिलकर भी लगवा सकते हैं, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा
2: जी जी।
1: अगर इस समय कहीं टीके लगवाने में कोई दिक्कत है जनपद में तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार बीमारी हो गई तो हमारा हजारों का इलाज कराने में लग जाता है, और गला घोटू में तो मैंने बताया कि जानवर बहुत ही खतरनाक कंडीशन में रहता है, बचने की संभावना भी कम है।
2: अब जानवर हाथ पे चले जाए और हम थोड़ा सो मान लो चूक कर गए तो जी बड़ी,
1: तो इसका टीका हम खरीद के 10-15 पशुओं में 1 cc उसकी खरीद के वो भी लगवा सकते हैं
2: जी।
1: पहले आप पता कर लें विभाग में अभी उपलब्धता है कि नहीं, उपलब्धता है तो विभाग द्वारा लगवा दिया जाएगा, नहीं है तो आप अपने आप से भी लगवा सकते हैं, फायदा ही है, हमारा ही फायदा है
2: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए पशु हमारा रोग ग्रसित है जाए
1: जी,
2: तो वास समय पे हमें कौन कौन सी किसान ने जो ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी सावधानी रखनी जाते वो और ज्यादा नहीं फैले?
1: देखिए जो फैलने की बात है, दोनों ही बीमारी, उसको हम इंग्लिश में कंटेजियस डिजीज बोलते हैं, जैसे कोरोना था,
2: हाँ।
1: सब जानते हैं हमारे पशु बालक भाई, एक आदमी के हो गया तो दूसरे के भी होने की संभावना है,
2: बिल्कुल
1: ऐसे ही ये दोनों बीमारियां भी हैं, FMD भी और गला घोटू भी, खुरपका मुंहपका, दोनों फैलने वाली बीमारी है
2: जी।
1: और FMD के केस में अगर होता है तो उसका इलाज ज्यादातर खुर में और मुंह में, इसमें छाले पड़ते हैं, उसको लाल दवा से धुलते हैं हम,
2: अच्छा,
1: और सुहागा जो पाउडर आता है उसको ग्लिसरीन में मिला के मुंह पे उसका लेप कर सकते हैं, दर्द का इंजेक्शन आता है सूजन का, वो एक लगा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस की बीमारी है इसलिए बहुत ज्यादा दवाई इसमें कारगर नहीं है, 5-7 दिन बाद जानवर स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है, बस नुकसान किसान को ये होता है कि दूध उत्पादन का जो कमी हो जाती है उसी की वजह से पशु को, हमें पशुपालक को नुकसान होता है
2: जी।
1: जहां तक गला घोटू की बात है, गला घोटू जो ये बैक्टीरिया होता है, ये अगर बीमारी हो जाए और इसकी शुरुआती अवस्था में अगर इसमें दवाई लग जाए तो जानवर बच जाता है, लेकिन अगर 2-3 दिन हमारे निकल जाए और जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इस बीमारी में, इसीलिए इसको हम गला घोटू
2: घुर
1: होने लगती है,
2: बिल्कुल
1: उस कंडीशन में आने के बाद जानवर को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ज्यादातर पशु जिंदा नहीं रह पाते हैं दवाई लगाने के बाद भी, काफी महंगा इलाज भी कराता है पशुपालक, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनका टीकाकरण हमारे पशुपालक भाई जरूर लगाएं। इतना महंगा पशु रखते हैं, आजकल 1-1.5 लाख से नीचे कोई भैंस नहीं आती है, और उनका इंश्योरेंस बीमा भी आप करा सकते हैं, कराना चाहिए, बल्कि सरकार की भी पॉलिसी मैं आपको बताऊं यहाँ इस माध्यम से,
2: अच्छा,
1: कि सरकार की पॉलिसी चल रही है, उसमें कुछ जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है सरकार कुछ अपनी तरफ से देती है छूट के साथ में, और कुछ हमारे पशुपालक भाई, जैसे फसल बीमा होता है सब जानते हैं
2: जी,
1: ऐसे पशु बीमा भी कराना जरूरी है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पशुपालक भाई को उसका लाभ जो सरकार दे रही है वो मिल जाएगा
2: जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये देखा है कि अधिकांशतः डेयरी में जो है 50-50 पशु, 100-100 पशु, और वो जो एक लंबी सी लड़ामनी में जैसे खोर बोलते हैं गांवों में
1: जी,
2: उसमें जो है चारा खाते हैं और पशुपालक जो है डालता चला जाता है, वो खाते चले जाते हैं, फिर जब वो खोल करके वो चुगाने के

0: लिए बाहर ले जाते हैं तो फिर से वो अपना स्थान बदल देते हैं। आज मान लो पहली लड़ामणि मतलब एक साइड में कोई अमुक पशु था, अगली बार जो लौट के आएगा कोई दूसरा होगा,
1: बदल जाता है।
0: तो क्या इस तरह से भी जो है जो मुंहपका की बीमारी फैलती
1: हाँ,
0: है?
1: ये लार के द्वारा, लार के माध्यम से,
0: हाँ
1: मैंने बताया ना, ये
0: जी जी
1: तो ये वायरस बीमारी है, ज़्यादातर वायरल बीमारी फैलने वाली होती है, तो इस तरह से भी पशु में ये एक दूसरे में फैलती है। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
0: जी
1: देखा कोरोना में भी आपने देखा, घर के अगर किसी सदस्य को हुआ है तो दूसरे को भी संभावना है, तो इस बीमारी का हम फैलने से तो बचाने में बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा
1: इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इसका टीकाकरण कराएं,
0: जी।
1: जिससे कि ये बीमारी ना हो पाए।
0: नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जो रोगित पशु है उसको हम अलग कहीं बांध
1: उसको
0: दें?
1: उसको अलग कर सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: रोग के लक्षण आ रहे हैं तो
0: जी
1: बिल्कुल ये हम कर सकते हैं कि जिससे उस पशु से, रोगी पशु से, दूसरे जो हमारे स्वस्थ पशु हैं
0: वो
1: उसमें
0: बचे हैं
1: वो बचे रहे, उसमें इन्फेक्शन ना जाए
0: बिल्कुल।
1: इलाज होने तक। हम क्योंकि कुछ समय तक जो है वायरस एक जो ग्रसित पशु है उससे दूसरे में फैलने की
0: हाँ
1: संभावना
0: बिल्कुल
1: रहती है।
0: जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले पोखरों में तालाबों में पशु पानी पीते थे, अब रोगित पशु भी जो है पानी पी रहा है और दूसरा भी पी रहा है, उसके माध्यम से लार उसमें गई और वो दूसरे पशु ने पी लिया तो उससे भी जो है रोग फैलती
1: हाँ,
0: है, तो
1: उससे भी
0: इसकी
1: रोग फैल
0: रोकथाम
1: सकता
0: कैसे कर
1: है।
0: सकते हैं हम?
1: नहीं, देखिए आजकल तो मैं समझता हूँ तालाब पोखरों में
0: हाँ कम ही
1: बहुत
0: जाते
1: कमी,
0: हैं
1: खत्म भी हो गए हैं और कम
0: जी।
1: ही जाते हैं। अगर इस मौसम में, अगर जो बीमारी के समय, फिर उसको बचाना चाहिए पशु को ऐसे कॉमन जगह पे। जैसे कई बार बीमारी फैलती है, आपने देखा होगा सरकार जो पशु पैठ लगती है
0: हाँ
1: जहाँ पे जानवर बेचे जाते हैं, बड़ी संख्या में पशु आते हैं, उन पे भी
0: हाँ
1: सरकार द्वारा रोक लगा जाती है।
0: जी
1: और वो रोक का कारण यही है कि अगर रोगी पशु उस पैठ में आ जाए, जैसे अभी लम्पी स्किन जो डिजीज थी, LSD, हमारे
0: जी
1: पशुपालक ने, जिसमें
0: गायों
1: त्वचा
0: की,
1: में गांठ सी बन जाती थी,
0: हाँ गायों
1: वो
0: की
1: भी एक वायरस की बीमारी थी।
0: जी।
1: उस समय भी सरकार ने जो मेले हमारे लगते हैं पशुओं के, जो पैठ लगती है, उन पे भी रोक लगाई थी, जिससे कि पशुपालकों को ये इसका बीमारी का नुकसान ना हो, दूसरे पशु में ना फैले।
0: अच्छा डॉक्टर साहब वो उस समय आई थी बीमारी लंबी बीमारी,
1: हाँ,
0: अब वो फिर एक साथ जो उसकी रोकथाम हो गई
1: रोकथाम
0: रुक
1: हो गया
0: गया
1: जी।
0: तो अब लक्षण नहीं देखे जाते, तो इसका मतलब हम ये समझे कि उसके वायरस मर चुके
1: नहीं
0: हैं?
1: नहीं देखिए
0: अच्छा
1: वायरस तो नहीं मरता है,
0: जी
1: लेकिन होता क्या है कि वायरस बीमारी आने के बाद एक इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक
0: हाँ
1: क्षमता, एंटीबॉडीज उसको बोलते हैं इंग्लिश में,
0: जी जी जी
1: वो हमारे खून में बन जाती है। उसके बाद वो कुछ समय तक एंटीबॉडीज बनी रहती है। होता क्या कि वायरस में वातावरण में बदलाव जब आता है तो वो दूसरे रूप में फिर से, आपने देखा ना कोरोना के आजकल भी कुछ केसेस कहीं कहीं
0: हाँ
1: रिपोर्ट
0: कहीं
1: हुए
0: कहीं
1: हैं,
0: आ जाते
1: तो
0: हैं
1: वायरस में बदलाव आने की वजह से वो फिर से बीमारी हो सकती है। अगर वायरस बदलाव नहीं करेगा तो उसकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं हमारे खून में,
0: वो उससे लड़ती
1: वो
0: रहेंगी।
1: लड़ती रहेंगी। अगर आगे फिर से वही वायरस आता है बगैर बदलाव के साथ में, तो फिर पशु को बीमारी के लक्षण नहीं आते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि जो पशुओं को टीकाकरण हुआ था
1: हाँ,
0: तो उससे उनमें जो है लड़ने की क्षमता रोगों
1: लड़ने की
0: से
1: क्षमता बन
0: बन
1: जाती है।
0: गई,
1: और
0: और
1: ये टीके जो हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 महीने में या साल में जो है दोबारा से रिपीट भी होते हैं।
0: जी जी
1: एक बार टीका लगाने से पूरी साल प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है।
0: हाँ
1: टीके की जो जो क्षमता है प्रतिरोधक, वो किसी टीके की 6 महीने होती है, किसी की साल की होती है, तो उसी के हिसाब से हमें रिपीट भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगवा लिया और सोचे कि पूरी जिंदगी बीमारी नहीं होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो साल में उसको
0: हाँ जैसे कि
1: दोबारा
0: हम उदाहरण
1: लगवाना
0: हम
1: पड़ेगा।
0: मनुष्यों से समझ सकते हैं, जैसे कि पोलियो को टीके पिलाए गए थे तो
1: हाँ,
0: उससे जो है साल दर साल चलता रहा तो वो पोलियो बिल्कुल ही जड़ से खत्म
1: कुछ कुछ
0: मान
1: बीमारी
0: सकते
1: ऐसी
0: हैं।
1: होती हैं, बहुत कम है, कि जिनका टीका एक ही बार लगता है, लेकिन ज्यादातर ये जो कॉमन बीमारियां हैं इनका टीका साल में या 6 महीने में हम हर बार उसको लगवाते हैं, जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की बनी रहे।
0: अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कि विशेषज्ञता के तौर पे आप हमारे किसान भाइयों को और ऐसी कौन सी बात बता सकते हैं कि जो इस गर्मी के मौसम में जो है पशुओं को सुरक्षित रखें और उनका जो दुग्ध का उत्पादन है वो बने रहे और कोई प्रकार की बीमारी नहीं हो?
1: देखिए, ऐसा गाय भैंस की बात करें, गर्मी
0: जी
1: के लक्षण, ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है किसानों को। दूसरा, जगह अगर पशु गाभिन है इस मौसम में,
0: जी जी
1: उसकी देखभाल भी थोड़ा हमें विशेष तौर से करनी होगी, क्योंकि इस समय जो गर्मी और नमी वाले मौसम में, हमने ये देखा है अपने जो हमारे कॉलेज की जो क्लिनिक्स है जहाँ पे पशु आते हैं इलाज के लिए,
0: जी
1: तो जो गर्भपात वाले पशु बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है
0: जी
1: गर्मी में, और टेम्परेचर बढ़ा है तो यानी कि पशुओं में गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए

0: से बचाएंगे तो पशुओं में गर्भपात की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि ये
1: हम्म,
0: भी पशुपालक के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक
1: नुकसान
0: है।
1: है बिल्कुल।
0: एक बार उसने मुश्किल से वो गाभिन हुआ है,
1: हाँ
0: फिर 3-4 महीने का अगर बच्चा फेंक दिया है,
1: बिल्कुल,
0: जिसको गर्भपात कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं, तो
1: हाँ
0: उसके बाद उसका इलाज कराना पड़ता है, और फिर लगभग हमारे हिसाब से उसको 90 दिन का रेस्ट आराम
1: हम्म,
0: हमें देना पड़ता है, दोबारा से गाभिन नहीं कराना,
1: जी
0: जिससे कि जो इन्फेक्शन था
1: हम्म,
0: पुराना वो पूरी तरह से उसको दूर हो सके।
1: जी
0: तो ये सबसे महत्वपूर्ण है गाभिन पशु का।
1: जी
0: उसके अलावा जो बियाने के बाद
1: हम्म,
0: जो समस्याएं हैं वो देखिए, गर्मी चूंकि सीधे तौर पे तो पशु में कोई बीमारी नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारी प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। कोरोना में हमने सबने देखा है कि सभी लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी उसको बीमारी नहीं हुई
1: नहीं
0: है, जिसकी
1: हुई
0: प्रतिरोधक क्षमता कम थी
1: उसको
0: उन
1: हुई,
0: लोगों को बीमारी हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये जितना हम गर्मी से बचाएंगे, दूध दूध की क्षमता बढ़ेगी पशु की,
1: हम्म,
0: गाभिन पशु है तो बच्चा नहीं फेंकेगा, और बियाने के बाद की समस्याएं जैसे जे रुक जाती है, दूध में बढ़ोतरी होगी, और बाकी अन्य बीमारियां हैं, उन सब से हम उसको बचा सकते हैं।
1: अच्छा एक भैया लाइन पे पूछना चाह रहे कछु।
0: जी
1: हेलो किसान वाणी,
2: हेलो डॉक्टर राम राम।
0: जी राम राम, बताइए आपका क्या सवाल है।
2: मेरे गांव मऊड़ीसा देवी सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी
2: हाँ
0: देवी सिंह बताइए।
2: डॉक्टर साहब, आज कड़ी भैंस है क्या इस महीना क्या बन टीका
1: क्या महीना की?
2: लगवा जाए? वो
1: नहीं, भैंस क्या महीना या बने?
2: एक महीना की
1: अच्छा
0: आप पूछना चाह रहे हैं कि टीका इसको लगवाएं कि नहीं।
1: हम्म,
2: एक महीना क्या बन
0: हाँ, एक टीके का कोई नुकसान गाभिन में नहीं होता है। ज़्यादातर केस में जो 6-7 महीने से ऊपर के गाभिन पशु होते हैं उसमें हम छोड़ देते हैं। एक
2: मेरे एक कंफ्यूजन है, जैसे बाद में बैटरी कॉलेज आ जाऊँ तो ऐसा मतलब बैटरी कॉलेज
0: जी
2: इंजेक्शन लगवाने का मिल जाएगा वहां से?
0: नहीं, ये टीका आपको खुरपका मुंहपका की बात कर रहे हैं? हाँ,
2: हाँ
0: खुरपका मुंहपका का टीका आप
1: टीका
0: कहीं
1: की,
0: से भी ले सकते हैं, उसको यहाँ जानवर लाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी लगवा सकते हैं। मैंने बताया था अभी, अगर आप हमारी वार्ता सुन रहे हैं तो उसकी सीसी, लेकिन एक जानवर की नहीं आती, 50 ml की, लगभग 12-15 जानवरों को टीके लग जाते हैं, आप घर पे भी लगवा सकते हैं। 1 महीने में आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, सुरक्षित है, उसकी गर्भावस्था को कोई खतरा नहीं है।
2: नहीं है ये पूछा, जैसे बरसात बरसात मौसम आएगा अब।
0: बरसात से पहले लगवाना है अभी,
2: हाँ वही पूछ रहा था आपसे मैंने, अगर
0: क्योंकि मैंने बताया था अगर बरसात में बीमारी फैलना शुरू हो गई उस समय, देखिए टीका लगने के बाद वो भी कुछ समय लेता है जिससे हमारे जो खून में प्रतिरोधक क्षमता बनती है,
1: जी
0: और
1: ठीक
0: अगर
1: है
0: मान
1: सर,
0: लीजिए कल इन्फेक्शन आ गया है और आज हमने टीका लगाया तो वो काम नहीं करेगा, पशु को बीमारी होने की संभावना रहती है, इसलिए हम बीमारी के मौसम से पहले टीका लगवाते हैं।
2: धन्यवाद।
0: जी
1: हाँ तो किसान भैया जी पूछना चाह रहे मुख्य रूप दे तो के भाई वेटनरी कॉलेज में अगर हम ले भी जाएं तो का मार टीका मिल जाएंगे?
0: हाँ टीका हमारे यहाँ उपलब्ध है,
1: हाँ बिल्कुल,
0: टीका लग
1: तो
0: सकता है, हालांकि बड़े पशु वाले केस कम आते हैं हमारे पास, वो
1: जी
0: ज़्यादातर गांव में ही लगवा लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिक सी बात है ना, पशु लेके आएगा गाड़ी से उसका वैसे ही बहुत खर्चा हो जाएगा, तो
1: अच्छा
0: इसलिए व्यवहारिक तौर पर टीका लगवाने के लिए हमारे पास कोई पशु नहीं लाता है।
1: हाँ एक भैया लाइन पे। हेलो
0: जी
1: किसान वाणी।
2: हेलो,
1: हाँ जी राम राम
2: अरे
1: जी,
2: डॉक्टर राम राम।
0: जी राम राम बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब, मैं ओल से चंद्रवान बोल रहा हूँ साहब। मतलब हमारी एक 8 महीना की एक लवे हुए साहब पड़िया, अब
1: हाँ
0: जी
2: वो मतलब ये हमें पीछे के पाँव थाली करके, मतलब ये थाली करनी पड़ता है, हम दम लाए ताकन्नो सही है
0: अच्छा, वो अभी हुई है ये समस्या कितने दिन से?
2: ये साहब। ऐसी भैया 1-1.5 महीना से
0: या तो उसको कोई चोट वोट लगी है मैं समझता हूँ, नहीं तो उसको
2: ना,
0: एक
2: चोट चोट ना लगी साहब, मेरे को कमजोर है वो।
0: कमजोर है तो उसको जो नरवाइन टॉनिक आता है, न्यूरोकाइन का एक इंजेक्शन आता है 2-3 ml, वो लगाए, या न्यूरोबियोन आदमी का भी आता है, आपने देखा ना लाल रंग का जो ताकत के लिए लगाया जाता है, उसकी टैबलेट भी आती है न्यूरोकाइंड जी करके, आप एक
2: अच्छा
0: एक
2: जी,
0: टैबलेट वो दे, आदमी वाली टैबलेट है वो, अच्छा काम करती है, 5-10 दिन खिलाएं, और
2: अच्छा
0: अगर फिर
2: जी,
0: भी कोई आराम नहीं मिलता तो हमारे यहाँ ला सकते हैं मथुरा वेटनरी कॉलेज में, अगर कोई जरूरत
2: अच्छा,
0: पड़ेगी जांच की उसकी
2: कोई
0: एक्स,
2: सीसी सीसी बता दो डॉक्टर साहब, कोई सीसी।
0: नहीं सीसी पिलाने की कह रहे हैं आप?
2: हाँ
0: हाँ पिलाने का भी न्यूरोबियन सिरप भी आता है, एक एक ढक्कन पिलाएं
2: अच्छा,
0: उसको, 200 ml लेके एक एक ढक्कन देते रहे,
2: न्यूरोकाइंड
0: न्यूरोबियन
1: न्यूरोबियन
0: पिलाने वाली,
2: न्यूरोबियन,
0: हाँ आदमी की है
2: अच्छा जी
0: ये
2: न्यूरोबियन,
0: मल्टीविटामिन और नर्व के लिए होता है, कई बार दबाव पड़ जाता है हमारे नर्व पे तो उससे जो है सेंसेशन नहीं रहता है, उसमें ये अच्छा काम करती है।
1: जी
0: ठीक है
1: तो

0: बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। बहुत से भैया यह बात उस जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई सुन रहे ये पामन में पिछले
1: हाँ
0: महीने
1: हाँ होता है
0: तो
1: ऐसा।
0: वो जो है कैश ठीक हुए।
2: फोन आ रहे हैं
0: हाँ
2: पर क्योंकि देखो हमें समय को भी ध्यान रखना। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
0: बिल्कुल
2: क्या उचित भोजन, स्वच्छ पानी, छाया और स्वास्थ्य देखभाल द्वारा गर्मी के मौसम में मादा पशुओं को स्वस्थ रखा जा सके है और इनकी उत्पादकता बनाए रखी जा सके है। तो देखो घड़ी की सुई इशारों कर रही है, सब भैया अनुमति लेते हुए सब भैया को
0: राम
2: राम।
0: राम।

गीत का था चल, इस फिल्म में अभी आपने जसपाल सिंह और साथियों को सुना, और आइए सुनते हैं पंडित जसराज के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज लोक कथा एहसान, कथाकार हैं नरसीलाल सागर।
1: दो राजा आपसई में बड़े दोस्त थे। जब दोनों राजा आपसई में दोस्त थे तो उनके जो राजकुमार पैदा भए वो बड़े आपसई में दोस्त थे और वो दोनों ही निशानेबाजी करबो सीखो करे। एक दिन उनने अपने अपने पिताजी से कही कि पिताजी अब तो हम निशाने में निपुण है गए, अब तो हम निशानों खूबी बांध लेते हैं। तो दोनों के पिताजी कहने लगे, वो राजा कहवे लगे, अरे भैया जब जानेंगे हम तो तुम्हें कि तुम निपुण है गए और निशानों बांध लें तो दोनों जने अलग अलग एक शेर मार के लाओ। ऐसो मत करियो कि दोनों एक ही शेर है मारो, अलग अलग एक एक, एक शेर मार के लाओ। दोनों राजकुमार हतकाएं जंगल को और शेर की शिकार खेले वे के काजे चल दिए। अब जंगल

में जा रहे हैं, जब घने जंगल में पहुंचे भैया तो कहा देख रहे हैं कि एक दो शेर दिखाई दे, एक जोड़ा दिखाई दे और एक शेर एक शेरनी, दोनों ने अपनी अपनी गोली दागी, समय बलवान होनहार की बात, एक राजकुमार की गोली और शेर के लगी और दूसरे राजकुमार की गोली शेरनी के लगी। शेर तो वही जगह पे भैया मर गयो, लेकिन शेरनी काऊ तरीका ते अपने प्राण बचाए के और मुआते भाग लई और घायल है गई, बड़ी परेशान है गई। शेर है तो वो लेके चले गए, शेरनी अपनी बाट में जाए के अपने घर पर जाए के जहाँ वो रह रही, अब तो बड़ी परेशान भूखी प्यासी मरे चले न जाए, बड़ी घायल है गई दुर्बल है गई। पर भैया शेरनी जो है गर्भवती ही गया वो नहीं, जब कछु समय बीतियो तो शेरनी ने एक बच्चा डार्यो शेर डार्यो, तो बच्चा जो है जब शेरनी कमजोर रही जब माँ कमजोर है भैया तो बच्चा कमजोर होगा, तो बहुत ही जो है कमजोर बच्चा भयो, बहुत ही कमजोर शेर भयो। तो कहो करें भैया कि पशु या पक्षी या औरत जब बच्चा पैदा होवे तो उन्हें बड़े ही तेज भूख लगे, तो जब शेरनी भूख लगी बच्चा हैवे के बाद में तो वो जो है जंगल के काजे निकली अपनी भूख मिटाएवे को, होनहार की बात एक शिकारी ने आए के और शेरनी के गोली मार दई और शेरनी वहीं पे मर गई। शेरनी तो वो ले गए, अब बच्चा जो है बड़ो कमजोर और मरण अवस्था में भैया वो जगह पे पड़ो जहाँ पे जो शेरनी रह कर रही। होनहार बड़ी बलवान, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है भैया, जाकू राखे साइया मार सके ना कोई और बालन वाको कर सके जो जग बैरी हो। अक्षमांत वा जगह पे कहीं ते एक बकरी भैया चढ़ते चढ़ते पहुंच गई, जब बकरी ने वह शेर के बच्चा को देखो बहुत छोटो मरवे की अवस्था में पड़ो आँखियों तक ना खोल लो, तो बकरिया समझ गई कि भाई या कोई न कोई माँ है न कोई बाप है जिन अकेलो कैसे डरो। बकरी दया आई और शेर के बच्चा को वहाँ ने अपनो जो है आंचर थन जो है वाके मुँह में लगाए दियो, जब वाके मुँह में थन लगाए दियो दूध जो है शेर के भीतर पेट में पहुँचो तो कछु वाय होश लौटो। ज्या तरीका ते बकरी जो है रोज दूध पिवावे शेर को, तो अब तो शेर जो है बड़ो होने लगो और शेर ने कही अरे बकरी मौसी अब तू चिंता मत करे, जा जंगल में तेरी राजी अब जहाँ चर अब तो ते कोई आंख मिलाए भी भाव नहीं। भैया ये समय को खेल हों तो बखत को खेल हों तो कबू कबू ऐसा ही समय आ जा तो बहुत ही कमजोर आदमी बहुत ही गरीब आदमी एक बड़े दबंग की सहायता कर सके, तो ये तो एक समय की बात है। कछूदना बाद जो बकरी वो गर्भवती, तो वहाँ ने दो बच्चा डारे तो बकरी बच्चा को पालन पोषण करे तमें शेरू उनकी रखवारी करे। एक दिन की बात है भैया शेर आराम कर रहे हो सोए रहे हो और बकरी एक तरफ बैठी अपनी जुगाली कर रही वार कर रही और वो बकरी के दो बच्चा शेर के ऊपर चढ़ के और पत्ती खाए रहे। वही रास्ता थे हंस और हंसनी उड़ के जा रहे, जब हंस और हंसनी ने जे करिश्मा देखो जे बात देखी कि चुवाई बकरी के बच्चा शेर के ऊपर चढ़ के पत्ती खाए रहे, हम सपनों देख रहे हैं या जगे रहे हैं ये क्या खेल है, जबकि जे तो जाको खा जो है। भाई शेर और बकरी को तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, वो रुक गई और पेड़ पर बैठ के पूछने लगे हे बकरी माँ एक बात तू हमें बता दे कि जे का खेलो है रो, तू उपासम बैठी है ते बच्चा या शेर के ऊपर चढ़ के पत्ती खाए रहे हैं, जे खेल हमारी समझ में ना आयो तू हमें यह बात है बता। तो बकरी कहवे लगी भैया कि जे सबरो खेलो है मदद को एहसान को, मैंने जा शेर के ऊपर एहसान करो है जाके माँ बाप न जाने कहाँ जया छोड़ के चले गए, जे मरेवे की अवस्था में जा जगह पर वो पायो मैंने जाए दूध पिवायो तो जे शेर दिले जाने मेरो एहसान मान्यो है ज्या वजह से आज मेरे बच्चा जाके ऊपर चढ़ के और पत्ती खाए रहे। अब हंस हंसनी बोले भाई हमारो नाम तो हंस हंसनी है, हम पक्षी न में हमें सबसे ज़्यादा बड़ो मान्यो जहाँ तू है, पर हमन तो आज तक कोई एहसान ही न करो काऊ पे, चलो हमों का ऊपर एहसान करेंगे। जब आगे को जा रहे तो कहा देख रहे हैं कि एक जगह सुगर ने अपनी भाट खोदी जो जंगली सुगर है जहाँ हिंस न को बिड़ो हिंस न को बनो, तो भाट तो

0: उदले गो जब आदो फंसे लौट भी भयो तो ही से जो आप सही में चिपट गई। भैया तुम तो जान तो ही से तो इतनी कटीली होते कि जब आप सही में घासो भर जाए तो फिर ना कोई छोड़ा सके। जब हंस और हंसनी ने देखे कि भाई चे तो कोई जानवर है और जहाँ में फंस गो या पीछे लौट ना सके, ही से जो है अपने आप में जकड़ गई हैं, कैसे करके जाके प्राण बचाओ, न जाने जे कह देना थी भूखो प्यासो या तरीका थे जहाँ में फंसे पड़ो। हंस और हंसनी ने कोशिश करके अपनी चोंच ते जो ही से फंसी वही डारें वो काटी और काट के जब जगह करी तो सुअर पीछे लौट के आए वाने देखते ही एकदम ते चांडाल रूप बन गए। वान गई ठीक है तीन चार दिना ते जे मोई है परेशान कर रहे चोन जे मार दे जाए, वो बात को तो समझ नहीं पायो और एकदम ते झपट्टा खेलो तो जो है हंस जो है वाने मार दो। हंसनी का तरीका ते बच गई। हंसनी रोमन लगी और कहन लगी के भाई बकरिया तो जी कह रही कि एहसान को दर्जा बहुत बड़े है सके तो काऊ पे एहसान कर दे, लेकिन मे संघ में तो मैं तो जान रण बनाए दई चोन जा बकरी के जो अरे चलूं और पूछूं कि तेरी बात झूठ है। हंसनी एकदम से लौट के आई भैया और बकरी ते कहन लगी, बकरी माँ पाई शेर पाए और बच्चे उपाए, कहे बकरी माँ एक बात बताए, तू तो बहुत बड़ी झूठी न करी, तू जो कहती कि एहसान को फल सबते बढ़ो काऊ पे करके देखे तो मैंने तो एहसान करो तो मेरो तो पत्यू मारो गयो और अब मेरो तो जोड़ा ही खत्म है गयो। बकरी बोली अरे हंसनी ऐसो तो ना आए कि तेने काऊ नीचे प्रवृत्ति के संग में एहसान कर रहे हो, अगर एहसान करे तो कहू शेर दिल के साथ में करे, एहसान करे तो भैया कहू उत्तम प्रकृति के साथ में करे जाके अंदर इंसानियत मानव शेर दिल हो, ऐसो तो ना कहू नीच प्रवृत्ति के कहू सुअर के संग में तो ना तेने एहसान कर दो। हंसनी एकदम से बोली हाँ बकरी माँ मैंने करो तो सुअर के ही संग में, सो भैया एहसान करवे थे पहले जे देख लेना चाहिए कि एहसान हम वाप करें जो एहसान के काबिल हो, पूजा हम वाकी करें जो भैया पूजा के काबिल हो, बात वाकी माननी चाहिए भैया जो बात मानवे के काबिल हो, जे बात हमें अपने कर्म करवे थे पहले सब देख लेनी चाहिए। तुम्हारे उस संग में कब ऐसी दगा वही होगी कि कब नीच प्रवृत्ति के संग में तुमने एहसान करो होगा परिवार ने तुम्हें दगाई दी होगी।
1: भैया आपने जिब्रज लोक कथा सुनी एहसान, कथाकार नरसीलाल सागर और श्रोताओं कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत मुन्नी देवी कुशवाहा के स्वर में।

मुनि देवी कुशवाहा के गाए यह लोकगीत के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: साल 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल

0: डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 18 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास ही के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय

और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
1: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार, आपेदा तरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, श्री वडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रथमेश, प्रणाली सानवी, कल्पना और उनके परिवारीजन, गांव पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पलेरा टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, जोहरीवाड़ा पैठण से चांद मामू, फुरकान शेख, जाखिया मोरवे, गुरफान शेख और खुशी मोरवे, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, सदर बाजार कोरावली से आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, रोहिणी सविता, अनिकेत ऋषिकेश, जीविका सानिका दले और उनके मित्रगण और परिवारीजन, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, पियरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सदनानी, शिवानी कुमारी, प्रियंका साहू, रिया जिया टूसी आयुषी और उनके मित्रगण और परिवारीजन, नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा अजमीन गुड़िया और उनके परिवारीजन, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जोहरी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहारकर, निर्मला, विशाल और उनके परिवारीजन, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत, अनमोल सिंह और पवनीत ग्रोवर, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, आप हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अकीता जोशी, अनूपपुर मध्यप्रदेश से जयवंती केवड़जी और उनके परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए

फूल और कांटे फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में, गीत रानी मलिक का, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण।

फूल और कांटे इस फिल्म का गीत अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में सुना। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। कोकहा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउलक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और

और बिमला अनेजा, रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और गुरशबद, रायनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, फूलो राणा, अजय राणा, ज्योति सागर, कुमार सागर, घनश्याम सागर और उनके मित्रगण, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज में दाग फिल्म का गीत, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार की आवाज में दाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब आप सुनेंगे आशा भोसले और साथियों को। फिल्म है खून भरी मांग, गीत इंदीवर का, संगीत निर्देशक राजेश रोशन। हमें जो पसंद मिली उनके नाम हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर मुखिया, कपिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, शुभ नारायण महतो, भूलिया गुप्ता और संगीता पासवान। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। श्रीगंगानगर से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारसा। पटेल नगर मरोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजोरिया और गुड्डू। दादरीगढ़ भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कृणाल मेहरा। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी तानिया और उनके परिवारीजन। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोटबड़े, अनीता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। जैन मंदिर वाली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े।

0: ये थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथ ही फिल्म थी हिम्मत वाला। गीतकार थे इंदीवर, संगीत निर्देशक बप्पी लहरी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद और उनके परिवारीजन। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और उनके मित्रगण परिवारीजन। राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और उनके परिवारीजन और मित्रगण। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेरा जहां। वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोन नाला बालाजी, रेणुका, बद्री, हिरणी, लोकेश और साई कृपा। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम, अक्षय सेन। तालुका नेवासा कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और उनके मित्रगण। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगण कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। और अब इसी के साथ ही संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। आज आप सुनेंगे इसकी 9वीं कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।

0: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। अब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने

0: स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5000 किलोमीटर का। पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलकर। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 इयर्स। जो कमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे।

0: तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो पीएलआई स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट? तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट? इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी। और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रूपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रूपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये।

0: सेवन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड है, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके, तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद

0: हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज एक रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते।

0: आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं। लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय।

0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमारा आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल की लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति

0: आते हैं जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

समवेत स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों

0: सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा

0: भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5,00,000 रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में

0: आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म थी अजनबी, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे R.D. बर्मन। और आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे किशोर कुमार, गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत निर्देशक थे आरडी बर्मन, फिल्म थी कटी पतंग। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है।

102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया, और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन वो इस दौरान होती है, और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं, और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं, तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स,
1: जी
0: वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
0: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSM है सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवा है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और TD वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना, और नौवा है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है, और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं, वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल।
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
0: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 की

0: पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त मतलब फिफ्थ ANC पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा हाई रिस्क फैक्टर्स, करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहे तो।
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
1: जी,
0: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ
1: जी, निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गाँव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
0: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है, जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है
1: जी।
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो

0: जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलोअप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना है, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे
1: जी
0: मनता है,
1: जी
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है। तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन का ये लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्य ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
4: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।

0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौर से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
1: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले। और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे, तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था, तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ की जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा, और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहाँ चयन हो गया?
1: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट चार विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों वर्ल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, उसका मुझसे सब लोग मिले। मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो, सबको खुशी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची, फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
0: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी, उनका फोन आता है, अरे तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा दी मेरे पास लिस्ट नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी, जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया, सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति का सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने चार विकेट लिए, बड़े प्लेयर्स थे चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
0: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
1: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी, तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर्स कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
0: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी।

0: क्रांतिकौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई।
1: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम तीन चार लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
1: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
0: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है। तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले।
0: जी
1: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अब ये लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
0: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
1: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साईं स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गाँव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
0: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
1: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
0: जी आपने सहयोग किया।
1: हाँ, तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। और उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
0: जी हाँ।
1: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है।
0: जी हाँ। उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
1: संघर्ष के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
0: अरे वाह,
1: हाँ, तो वो उसको जब हमने ला के दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
0: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
1: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है, हट के देखेंगे तो आपको अलग ही उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की इसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है।
0: मतलब एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति।
1: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
0: तभी इतना आगे पहुंची है।
1: जी जी जी।
0: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: देखिए, हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
0: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान

0: रहता है, तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौर जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला
0: हाँ
1: जी
0: थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी
1: जी
0: भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा,
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
1: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे?
2: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
1: जी,
2: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
1: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
2: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
2: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
2: बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पर ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पर उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला।
1: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
2: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज भी है।
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
2: व्हीलचेयर के साथ में ही जाते हैं।
1: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
2: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
1: जी,
2: और इसका

0: जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन, और उत्तर
1: अच्छा
0: प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहले ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह
0: इसका
1: के
0: फाइनल जो
1: खिलाड़ी,
0: मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है, कहीं ना कहीं खेल को प्रोत्साहन दे रही है। जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और
1: जी
0: शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था
0: जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और
1: चलिए
0: मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी।
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे एक
1: जी
0: प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में। उन्होंने 19 बॉल में
1: जी, बहुत बड़ी बात। और वाकई में ये जो मैच है, देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे
0: बिल्कुल,
1: लिए
0: कहीं
1: जी।
0: ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे, लगभग लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ, तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
1: जी
0: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
1: जी
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है। और
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग हैं और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ
0: धन्यवाद।
1: सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरी शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा,
2: जो कि
1: बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे शिकायत भी बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जो दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे ये
1: पानी से दूर
2: आज
1: रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ज्ञान के स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ज्ञानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर

0: अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
1: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का,
0: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे कहते लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं, पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
1: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
0: इसकी चार स्टेप होते हैं, सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं, फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
1: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
0: उसको बारीकी बताते हैं।
1: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
0: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है, और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी हो जाएगी। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वही बॉक्सिंग का था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहाँ पहुँच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
2: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
3: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहाँ से। फिर
2: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति है जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
3: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली।
2: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है। बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
2: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके

0: बट उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती है। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है।
1: जी
0: अगर आप उसको वो करवाओगे ना, तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं सकती
1: चलिए,
0: कि
1: लेकिन
0: क्या होता आगे। हाँ, बाकी मैं
1: हमारे
0: लगी हूँ प्रैक्टिस
1: मनोकामना है।
0: पे।
1: और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
0: जी
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।

0: ये देखिए अभी मेरे को दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं सकते कि
1: लेकिन
0: क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं
1: हमारे यहाँ
0: लगी हूँ
1: सामना है,
0: प्रैक्टिस
1: और इमरोज खान जी आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
0: में।
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप। खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
2: खेल दर्पण।
3: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में निम्न जनपदों में आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस और मथुरा के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज आंधी तूफान, जिसमें हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा पहुंच सकती है, इसके साथ बिजली कड़कने, मध्यम बारिश और ओले गिरने की बहुत ज्यादा संभावना के रेड अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपना ध्यान रखें और आंधी तूफान के वक्त बेवजह बाहर ना निकलें। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में सरोद वादन। वादक कलाकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां साहेब।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग पूरी धनाश्री में सरोद वादन, वादक कलाकार थे उस्ताद अलाउद्दीन खां साहेब। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य की

0: मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued